0: Mirchi. R-O-C-H-I-E. Roshi, Roshi. Mirchi, Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे आपके अंजर पंजर सारे ठीक चल रहे हैं, बैक इज फाइन, जॉइंट्स आर फाइन, लेकिन डॉक्टर हॉट है, इसलिए आप हर हफ्ते डॉक्टर के पास नई परेशानी लेकर पहुंच जाते हो. सो नॉट इफ यू
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई भी भसर टाइप कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक, वी विल टॉक अबाउट इट. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू?
4: I'm good. How are you?
2: I'm good. मैंने आपका कन्फेशन जब पढ़ा, आई वॉज फीलिंग वेरी बैड फॉर योर डैड एक्चुअली. तो एक्चुअली स्टोरी है क्या?
4: तो द थिंग इज, मेरा एक एक्स है और हमारा बहुत ऑन एंड ऑफ का रिलेशनशिप रहा था इन द पास्ट. एंड मेरा बर्थडे था एंड आई वेंट ऑन अ डिनर विद ऑल माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ही शोड अप ड्रंक एंड क्रैश्ड माय पार्टी. एंड उसके बाद ही हैड द ऑडेसिटी टू फॉलो माय डैड इनटू द मेंस वॉशरूम एंड बेग्ड हिम कि मैं उससे पैच अप कर लूं.
2: व्हाट? दिस इज सो वियर्ड. One second, I can just picture this. आपके डैड वॉशरूम में है, he is doing his business, और suddenly साथ में एक बंदा आके खड़ा होके कहता है, hey, what's up, dog? And your dad is like, हाँ बेटा बोलो.
4: What's up, dog? नहीं रोशी, he greeted him, नमस्ते अंकल, पैर छुए, and like he was like, my dad was traumatized. उन्होंने मुझे एक हफ्ते बाद बताया.
2: वॉशरूम में उसने आपके पापा के पैर छुए हैं, वॉशरूम में?
4: हाँ.
2: I hope you did not go back to.
4: Running joke in the family.
2: Oh God! Please tell me you did not go back to this guy.
4: No, I haven't.
2: ये रोशिफिकेशन आपके लिए कम और आपके पापा के लिए ज्यादा है, ठीक है?
4: Thank you so much.
2: There you go.
0: You've been roshified.
2: You poor thing. Next time you actually end up in a relationship with someone, make sure कि उसे आपके पापा और मम्मी के पास access zero हो. All the best to you. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई confession है, why don't you hit me up on Insta या FB? I'll be so happy to talk to you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. Do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ये सारी दुनिया एट दिस पॉइंट इन टाइम, ओके चल सारी दुनिया नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ इंडिया इस सारे टाइम प्यार में और बारिश दोनों में भीगी हुई है. द अदर डे आई वॉज कमिंग टू वर्क और मैंने इसे देखा साइड में ना पेवमेंट पर एक कपल बैठा हुआ था, बारिश इंजॉय कर रहे थे दोनों, समोसा खा रहे थे और लड़के के हाथ में छतरी थी, एक्सेप्ट उसकी छतरी थोड़ी सी लेफ्ट साइड को टिल्ट कर रही थी ताकि उसके साथ जो लड़की बैठी है वो भीग ना जाए. सो वाइल उस लड़के का एक साइड का कंधा भीगे जा रहा था, ही डिडंट रियली केयर, और वो लड़की उससे बातें करती जा रही है, समोसे खा रही है, एक पीस जलेबी खा रही है. शी हैड नो रियलाइजेशन कि कैसे उस लड़के ने अपनी छतरी को उस तरह से टिल्ट किया है कि वो भीग जाए भले, लेकिन वो लड़की ना भीगे. एंड दैट आई थिंक यू नो बारिशों में ना प्यार के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं. एंड आई थिंक ऐसा सीजनल नहीं है प्यार, कभी भी कहीं भी हो सकता है, बट जितना गौर से मैंने प्यार लोगों के बीच में बिल्ड होते ब्लॉसम होते देखा है ना इन द मानसून का सीजन, वो मैंने शायद कभी भी नहीं देखा. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दैट यू हैव फॉलन इन लव ड्यूरिंग द मानसून? अगर हाँ देन वाई डोंट यू हिट मी अप एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: स्कूल में आई स्वेयर मैंने एक भी केमिस्ट्री की क्लास मिस नहीं की, लेकिन स्कूल की केमिस्ट्री जो मुझे नहीं सिखा पाई वो मुझे जिंदगी ने सिखा दिया कि दो लोगों के बीच में या तो केमिस्ट्री होती है या नहीं होती है. सिंपल सी बात है. आई गेस वी हैव टू गो बैक टू दैट पुराना शेर कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे. अब अगर आपका किसी के साथ केमिस्ट्री वाला सिचुएशन है, आप लाख कोशिश कर लो, यू वॉन्ट बी एबल टू कीप इट डाउन. और अगर केमिस्ट्री नहीं है तो वेल, नो वाइब इज नो वाइब. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज येस्टरडे आई वेंट आउट टू अ पार्टी विद लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स और उसमें एक बंदा है. हम दोनों की ना वाइब बहुत लाइक सॉर्टेड है और ऐसे नहीं है दैट वी आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर बिकॉज मैं सिंगल हूँ एंड ही इज डेटिंग समबडी एल्स. बट क्योंकि हमारी केमिस्ट्री है तो हमारी केमिस्ट्री है, सबको दिखाई देती है, नो वन टॉक्स अबाउट इट एंड आई ऑल्सो कीप क्वाइट बिकॉज किसी और के बंदे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है. दैट्स अगेंस्ट माई मॉरल कंपस. आपका मॉरल कंपस कहाँ सिचुएटेड है? Why don't you tell me about it? And if you want to be my mystery caller, मैं आपका नाम भी नहीं बताऊंगी किसी को. मेरा नाम on the other hand है मिर्ची रोशी. नाम के स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. So now find me on the gram या Facebook and whatever you do. कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Milci. Escabana, uscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La virtua, la murga.
1: Milci, murga. Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: थैंक यू.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ. नहीं लगता उसका.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: लगे हुए गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो.
1: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह. आओ मिलो,
1: आओ मिलो,
2: शिलो शालो,
1: शालो,
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा,
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े,
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: श्रीवास्तव
2: बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कोई सुनेगा तो
2: नहीं सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पगला
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: नए नए रिलेशनशिप के पहले ही कुछ महीनों में यू शुड फिगर आउट कि आपके फ्यूचर के प्लान्स एक जैसे हैं या नहीं. सोचो, एक इंसान ये सोच रहा है कि एक साल में शादी कर लेंगे, दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि ये एक सिचुएशनशिप है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स एंड योर कोट अनकोट पार्टनर इज थिंकिंग समथिंग एल्स, व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर इंस्टा पर या FB पर एंड लेट्स गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर वेदांत है. हाय वेदांत.
3: हाय,
2: हाउ आर यू?
3: I am fine. I can't believe.
2: हम बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड है तेरी?
3: मतलब एक्साइटमेंट नहीं है.
2: क्यों एक्साइटमेंट नहीं है? तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्यों, क्या हो गया?
3: गर्लफ्रेंड है लखनऊ में अभी.
2: तो इसका ये मतलब थोड़ी कि
3: दूसरे लड़के के साथ.
2: ये कब हुआ?
3: ये हो गया मैम, लॉन्ग स्टोरी.
2: तो अब
3: कुछ नहीं, अभी चल रहा है.
2: कब से हुआ तेरा ब्रेकअप?
3: हो गया मैम एक डेढ़ साल.
2: एक डेढ़ साल? एक डेढ़ साल ज्यादा टाइम नहीं होता टू मूव ऑन इन लाइफ एंड टू फाइनली गेट अनदर प्रॉपर गर्लफ्रेंड?
3: नहीं, मैं बहुत ट्राई किया पर क्या पता.
2: मतलब कहाँ, कैसे ट्राई किया, चल बता मुझे.
3: मतलब मूव ऑन करने का, भूलने का भी बहुत ट्राई किया मैं, विदाउट कॉन्टेक्ट भी रहने का ट्राई किया. बट एट द एंड एक टाइम पे सिर्फ वही लड़की स्टक ही होती थी माइंड पे, नहीं आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा था. और अभी भी मतलब मैं ट्राई करता हूँ पर हो रहा नहीं है मेरे से.
2: तो डेढ़ साल हो गया और अभी भी तुझे उस लड़की से प्यार है, करेक्ट?
3: प्यार है, हाँ मैम.
2: देख स्वीटहार्ट,
3: इसको भी मुझे मेरी कोई कदर नहीं, इसको भी पता अब तक मैं रुका हूँ, एक्सेप्ट करने को भी रेडी हूँ बट नहीं.
2: यार अगर डेढ़ साल से वो वापस नहीं आई है ना, द चांसेस आर दैट शी इज प्रोबेबली नॉट कमिंग बैक. दैट सेड, अगर तू आगे नहीं बढ़ेगा ना, तो ये तेरा पास्ट रिलेशनशिप तेरी प्रेजेंट लाइफ को कंज्यूम कर देगा. यू नो दैट राइट?
3: या मैम.
2: तो एक काम क्यों नहीं करता, डेटिंग ऐप डाउनलोड करेगा एक?
3: हाँ करूंगा.
2: करेगा? और जो भी डेटिंग ऐप डाउनलोड करेगा उसमें अपनी बेस्ट फोटोज लगाएगा, प्रॉमिस?
3: प्रॉमिस.
2: अगर कोई लड़की जब तुझे राइट स्वाइप करके बात करने की कोशिश करेगी, खुले दिल से तू उससे बात करेगा, ठीक है?
3: चलेगा, चलेगा.
2: हाँ, और पहले एक दो कॉन्वर्सेशंस में, जो टेक्स्ट की कॉन्वर्सेशंस है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कोई मेंशन नहीं करना है, ठीक है? ओके, बिकॉज गर्ल्स के साथ जब आप पहली बार बात कर रहे होते हो, दे डोंट वांट टू नो अबाउट योर पास्ट सो अर्ली ऑन इनटू अ कॉन्वर्सेशन. ओके
3: ओके मैम, फॉर श्योर, थैंक्स.
2: आप ये करोगे और फिर मुझे बताओगे कि आपको डेट मिली कि नहीं? हाँ कि नहीं?
3: पक्का, पक्का, पक्का मैम, पक्का.
2: आप मुझसे तो प्यार करते हो ना?
3: हाँ मैम, बहुत प्यार करता हूँ.
2: तो मेरे प्यार में आपको ये करना पड़ेगा, वी विल मूव ऑन टुगेदर, ठीक है? आप अकेले नहीं हो इसमें. आई लव यू यार. अच्छा अब ठीक है, फोन रख और डेटिंग ऐप डाउनलोड कर अभी.
3: ओके मैम, ओके. और इंस्टा पे आप रिप्लाई करोगे ना मैम?
2: हाँ रिप्लाई करूंगी, मुझे डेटिंग ऐप की फोटो भेज अपने.
3: ओके चलेगा.
2: आई लव यू. ओके,
3: लव यू,
2: बाय. अगर आपकी भी जिंदगी में वेदांत की तरह ऐसे ही यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव ऑन, शायद हम दोनों का प्यार, आपका और मेरा, इतना टाइट है दैट वी कैन एक्चुअली मेक इट वर्क फॉर यू. और वो करने के लिए एंड उसके बारे में पता करने के लिए यू जस्ट हैव टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो व्हाट यू वेटिंग फॉर? हिट मी अप, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा

क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी एक डम इंसान को डेट किया है? लाइक दैट पर्सन इज रियली नाइस, एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन इज सो सॉफ्ट एंड जेंटल एंड फ्रेजाइल की उम्दा, बिल्कुल ही चपली कबाब की तरह, लेकिन इनहेरेंटली वो इंसान इतना डम है कि उसके साथ एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन नहीं की जा सकती है। इन दैट केस, डू यू स्टे विद दैट पर्सन और डू यू डंप दैट पर्सन? इस सवाल का जवाब मेरे पास आज तक जिंदगी में नहीं आया है। आई डेटेड सम रियली स्मार्ट मैन हू बीन लाइक नॉट एम्पथेटिक एंड आई हैव ऑल्सो डेटेड सम वेरी जेंटलमैन जिनकी IQ 4 से ज़्यादा नहीं है, और दोनों ही सूरतों में मुझे समझ नहीं आया कि मुझे एक इंसान से इन अ पार्टनरशिप क्या चाहिए, जेंटलनेस एंड कंपैशन या इंटेलेक्ट, क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन लिव विदाउट आइदर वन ऑफ द टू। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें सरप्राइज सरप्राइज दोनों ही चीज़ें हैं, तो अब तक कहाँ थे तुम जाने, मन तुम्हारे इंतज़ार में तड़प तड़प के सूख गई हूँ मैं। हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE, एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज़ एग्जैक्टली लाइक मी, स्ट्रगलिंग विद व्हाट टू डू विद योर पार्टनर, हिट मी अप नेवरटेलेस, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ढूंढो मुझे ऑन द ग्राम या फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Honest confession time. मैं अपने एक एक्स के साथ अभी भी दोस्त हूँ एंड द रीज़न वे फ्रेंड्स इज़ नॉट बिकॉज वो अमेजिंग कंपनी है या वो किलर बातें करता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ही उम्दा फोटोग्राफर है और मेरी फोटोज जैसी वो खींचता है कोई और नहीं खींच सकता. सो व्हाइल आई एम सिंगल आई फिगर्ड कि क्यों ना उससे दोस्ती मेंटेन करी जाए ताकि मेरी कम से कम अच्छी फोटोज तो आती रहे. यू कैन चेक देम आउट ऑल्सो ऑन इंस्टा या FB, दोनों जगह खुलेआम पोस्ट की है मैंने. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू आर ऑन सोशल मीडिया मुझे ये बताओ कि आप अपने किस एक्स के साथ अभी भी दोस्त हो और क्यों, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रीजन डार्लिंग. एंड व्हाइल यू टेल मी दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
3: Love is the message, eh?

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Rabbala.
1: Burga, burga. La vieva la burga.
2: Milci, burga.
3: Hello?
4: Hello? Hello?
3: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
4: साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा,
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: मैं तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: तू चोरी करने के लिए गया?
4: तुमने पहले क्यों नहीं
3: बताया? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
4: बात सुन,
3: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
4: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: अब ठीक है,
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स पटाक।
6: मिर्ची
8: ROCHI, रोशी रोशी,
6: मिर्ची रोशी,
9: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।
10: वैसे आपके अंजर पंजर सारे ठीक चल रहे हैं, बैक इज फाइन, जॉइंट्स आर फाइन, लेकिन डॉक्टर हॉट है, इसलिए आप हर हफ्ते डॉक्टर के पास नई परेशानी लेकर पहुंच जाते हो। सो नॉट इफ यू
11: द सीक्रेट बॉक्स।
10: अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई भी भसर टाइप कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक, वी विल टॉक अबाउट इट। मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर। हेलो मिस्ट्री कॉलर।
12: हाय रोशी,
10: हाउ आर यू?
12: I'm good, how are you?
10: I'm good. मैंने आपका कन्फेशन जब पढ़ा, आई वॉज फीलिंग वेरी बैड फॉर योर डैड एक्चुअली। तो एक्चुअली स्टोरी है क्या?
12: तो द थिंग इज, मेरा एक एक्स है और हमारा बहुत ऑन एंड ऑफ का रिलेशनशिप रहा था इन द पास्ट, एंड मेरा बर्थडे था एंड आई वेंट ऑन अ डिनर विद ऑल माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ही शोड अप ड्रंक एंड क्रैश्ड माय पार्टी, एंड उसके बाद ही हैड द ऑडेसिटी टू फॉलो माय डैड इनटू द मेंस वॉशरूम एंड बेग्ड हिम कि मैं उससे पैच अप कर
10: लूं। दिस इज सो वियर्ड। One second, I can just picture this. आपके डैड वॉशरूम में है, he is doing his business, और suddenly साथ में एक बंदा के खड़ा होकर कहता है, hey, what's up, dog? And your dad is like, हाँ बेटा बोलो।
12: What's up, dog? नहीं रोशी, he greeted him, नमस्ते अंकल, पैर छुए, and like he was like, my dad was traumatized, and उन्होंने मुझे एक हफ्ते बाद बताया।
10: वॉशरूम में उसने आपके पापा के पैर छुए?
6: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: You know, I've realized in my personal life कि बहुत सारे लोग अक्सर mistake करते हैं प्यार को to be like a showpiece कि एक बार मोहब्बत हो गई, I love you कह दिया, उसके बाद जिंदगी में और भी गम है और भी काम है, तो हमारा जो relationship है उसे हम third या fourth priority देने लगते हैं. But the truth is कि प्यार showpiece नहीं होता. Love in fact is a lot like a cake या a slice of bread. अगर आप उसे ज़्यादा देर तक unattended रखो ना, तो उसमें fungus लग जाती है. और प्यार बिल्कुल इसी तरह है. अगर आप प्यार में थोड़ा सा neglect आने दो और सामने वाले इंसान को priority की list में नीचे रखना शुरू कर दो, तो before you know it, उस relationship में इस तरह की दरारें आ जाती हैं जो फिर भरना बहुत मुश्किल है. Why am I telling you all of this? Because I have been in a position like that. सामने वाले इंसान ने पहले तो बहुत दींगे मार के कहा that I love you. एक बार I was in his life as his girlfriend. फिर वो almost मुझे भूल ही गया. और जब मुझसे बात करता था तो भी he was so consumed with his own life कि मेरी जिंदगी के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था. And before we knew it, हमारी जिंदगी में इतनी जगह आ गई थी कि

है दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफो hips lips eyes thighs sab gazab sab gazab sab gazab sab gazab sab gazab sab gazab sab gazab sab gazab sab gazab

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. Na vidva la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Could I speak to Komal, please?
1: Speaking.
2: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
1: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
2: ओके.
1: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेज में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
2: राइट.
1: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
2: ओके.
1: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी. तो वहाँ मुझे छेड़ा.
2: कितने बजे गई थी आप?
1: साढ़े दस बजे.
2: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
1: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
2: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
1: मुझे बड़ी जरूरी काम
2: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
1: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
2: नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
1: खुद गुस्से में.
2: आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
1: आप हद से ज्यादा.
2: क्या बात कर रहे हैं?
1: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
2: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
1: नहीं कर सकते आप.
2: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
1: की सुरक्षा की सुरक्षा के साथ ही
2: किस तरह की. नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो.
1: हेलो.
2: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को
1: लेकर.
2: कोमल कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं साढ़े दस बजे?
1: मिस्टर, ये आप हैं. मेरे को गुस्सा दिलाया.
2: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
1: ओके कुकड़ू कू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Hit,
0: only on Radio Mirchi. It's hot.

आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लोगों को लगा अब इस बंदे की हिट पे हिट पे हिट पे हिट फिल्में आई थी, एक दो आई भी जैसे कि बागी, साजन, सनम बेवफा, लेकिन उसके बाद धड़ल्ले से फ्लॉप फिल्में जैसे कि पत्थर के फूल, सूर्यवंशी, जागृति, निश्चय, एक लड़का एक लड़की, चंद्रमुखी, दिल तेरा आशिक, ये सब चलता रहा 1994 तक। लेकिन उनके सितारे फिर बदले 1994 में जब आई हम आपके हैं कौन, जिसने लड़के को फिर से स्टार बना दिया। वैसे सलमान खान और दीवार फिल्म में क्या रिश्ता है? इनके पिताजी ने लिखी थी दीवार फिल्म, सलीम खान साहब अलोंग विद जावेद अख्तर साहब। दीवार फिल्म का गाना सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो हेलो
3: भैया आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज?
4: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दी है? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार आवाज करेगी। आप ये क्या, बंद कर इसको, बंद कर बंद कर बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: चोरी करने ले गया
4: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
3: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
4: मेरी बात सुन,
3: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
4: मेरी बात सुन।
3: हेलो
4: यार कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: अब ठीक है।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

1973 की फिल्म सौदागर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में थी नूतन, साथ में थे अमिताभ बच्चन। उनकी जगह पे पहले ना इस फिल्म में संजीव कुमार होने वाले थे, लेकिन क्या हुआ था, 1970 की फिल्म देवी की फिल्म की शूटिंग के दौरान, जिसमें अगेन नूतन एंड संजीव कुमार थे, नूतन जी को ऐसा पता चला कि संजीव कुमार उनके रिलेशनशिप के रूमर्स फैला रहे हैं, जबकि नूतन जी ऑलरेडी मैरिड थी, उनका बेटा भी था, तो उनको ऐसा पता चला कि वो उनके आपस में रिलेशनशिप के रूमर्स फैला रहे हैं। इस बात को लेकर जब उन्होंने संजीव कुमार जी को कन्फ्रंट किया, तो संजीव कुमार जी ने इस बात को डिसमिस कर दिया और थोड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड दिखाया, जिससे नूतन जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सेट पे सबके सामने संजीव कुमार जी को थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से फिर नूतन जी के हाथ से काफी फिल्में छूट गई, काफी फिल्मों से संजीव कुमार भी अलग हो गए, एंड सौदागर वॉज वन सच फिल्म। चलिए लड़ाई झगड़ा साइड करते, लव इश्क प्यार मोहब्बत वाला गाना सुनते। कुछ ज्यादा ही लव इश्क प्यार मोहब्बत था इस गाने में, दयावान का ये सुपर रोमांटिक गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म के दौरान चुपके चुपके जिसका हमने गाना सुना, धर्मेंद्र साहब प्लेड लिटिल डर्टी। वो कैसे? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो ऐसे कि डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने आशा पारेख जी को प्रॉमिस किया था कि वो उनको इस फिल्म में कास्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि तब धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे, ही समहाउ वांटेड टू वर्क विद शर्मिला टैगोर इन दिस फिल्म, एंड किसी तरह से ऐसे वैसे जैसे तैसे करके उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को कन्विंस कर लिया कि शर्मिला टैगोर को इस फिल्म के लिए कास्ट किया जाना चाहिए। एंड आशा पारेख जी वॉज कम्प्लीटली साइडलाइंड इस बात को लेकर। वो ऋषिकेश मुखर्जी से एंड धर्मेंद्र से काफी टाइम तक नाराज रही थी। बिल्कुल नाराजगी बनती है अगर ऐसा हुआ था तो। और अभी कैसा है कि ब्रेक लेंगे हम, म्यूजिकल ब्रेक, जहां गाना सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन।

1981 की फिल्म नसीब का ये गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और यही थी वो फिल्म जिसके गाने से फारा खान को इंस्पिरेशन मिली थी ओम शांति ओम में वो वाला गाना इंक्लूड करने की, जिसमें इतने सारे फिल्म स्टार्स थे। और नसीब फिल्म में वो गाना कौन सा था? जॉन जॉनी जनार्दन तररम पम पम पम पम। और इसमें जो इतने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आए थे ना, उनको जमा करने की जिम्मेदारी पता है किसकी थी? अच्छा, फिल्म तो मनमोहन देसाई साहब ने ये डायरेक्ट की थी, लेकिन इन एक्टर्स को जमा करने की जिम्मेदारी थी राज कपूर साहब की। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा गाना जो है वो RK स्टूडियोज में शूट हुआ था। जॉन जॉनी जनार्दन, इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देखें, मजा आ जाएगा। और अभी सुनेंगे वो गाना जो बड़ा क्यूट टाइप का रोमांटिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना, लेकिन इस फिल्म के दौरान प्रेम का एक धागा टूट गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। प्रेम नहीं, एक्चुअली दोस्ती का धागा टूट गया था। भाई देवानंद साहब और मदनपुरी साहब की बहुत अच्छी खासी पुरानी दोस्ती थी, जिसमें इस फिल्म के दौरान दरार पड़ गई। मदनपुरी साहब एक और फिल्म साइन करना चाहते थे जिसका नाम था नन्ना फरिश्ता। अभी सीन कुछ यूं हुआ कि प्रेम पुजारी फिल्म के लिए जो उन्होंने डेट्स दे रखी थी, उन डेट्स में से 5 दिन निकाल के उनको उस फिल्म को देने थे। उन्होंने देवानंद साहब से रिक्वेस्ट की और ऐसी कुछ बात हुई कि देवानंद साहब थोड़ा गुस्सा हो गए, वो मदनपुरी साहब पे चिल्ला दिए, उनको वो 5 दिन नहीं मिले और दूसरी फिल्म उनके हाथ से निकल गई। इस पर मदनपुरी साहब उनसे काफी नाराज हो गए। बाद में दोनों ने फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन उन्हीं फिल्मों में जिनका काम पहले से चल रहा था या किसी प्रोफेशनल रीजन की वजह से। पर्सनल रिश्ता फिर वैसा रहा नहीं। वो क्या बोलते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
3: थैंक यू
4: अतुल। वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
3: आई नो वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
4: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो
3: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
4: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
3: लगे हुए गेम है क्या ये?
4: आओ मिलो शिलो शालो,
3: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
3: आओ मिलो
4: शिलो शालो,
3: शालो
4: कच्चा
3: धागा
4: रेस
3: लगा लो
4: 10 पत्ते तोड़े
3: 10 पत्ते तोड़े
4: 1 पत्ता कच्चा
3: 1 पत्ता कच्चा।
4: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे 10 पत्ते तोड़े या मिस्टर श्रीवास्तव 10 पत्ते तोड़े 10 पत्ते तोड़े
3: 10 पत्ते तोड़े
4: हिरण का बच्चा
3: घोड़ा
4: दौड़ा टुकड़ू दू श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को
3: मिस्टर
5: श्रीवास्तव। बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
3: यार ये कोई सुनेगा
5: तो सर ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

1988 की सुपर डुपर हिट फिल्म कयामत से कयामत तक का सुपर डुपर से भी ऊपर हिट गाना इट इज सॉर्ट ऑफ एन एंथम पापा कहते हैं ये हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में आमिर खान का किरदार जिस पापा के लिए गाना गा रहा है दैट पापा इज प्लेड बाय दिलीप ताहिल साहब। एंड दिलीप ताहिल साहब को बुनियाद टीवी शो जो उस टाइम मिड 80s में दूरदर्शन पे आता था, बहुत ही पॉपुलर शो था, उसमें उनका काम देखकर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब ने उनको साइन किया था। एंड टॉकिंग अबाउट दिलीप ताहिल साहब ना, अगर आप उनका इंस्टाग्राम फॉलो करोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत एंटरटेनिंग है वो। वहां पे खुद ही के ऊपर बने मीम्स वो शेयर करते रहते हैं और जितने भी ट्रेंड्स चलते हैं सबको फॉलो करते हैं। तो उनका आईडी है @dalip DALIP दलीप THIL ताहिल दलीप ताहिल। वेल मेरा आईडी ऑन इंस्टाग्राम इज @RJ.Charu RJ.CHARU। और अभी हम सुनेंगे वो गाना जो कि है फ्लर्टेशन का पापा गाना, दिस इज ऑल्सो एन एंथम। आराधना फिल्म का ये गाना कंपोज्ड बाय SD बर्मन, रिटन बाय आनंद बख्शी, संग बाय किशोर कुमार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

0: हाय, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची, तीन देवियां फिल्म का ये गाना। और अब जो गाना सुनने वाले ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आई एम श्योर आपको भी पसंद है। मंजिल फिल्म का रिम झिम गिरे सावन।
1: जी, वही गाना जिसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ऐसे बारिश में, मतलब मजे में घूम रहे हैं, बारिश भी इंजॉय कर रहे हैं, रोमांस भी कर रहे हैं। तो इस आइकॉनिक पिक्चराइजेशन के पीछे की कहानी ये है कि डायरेक्टर वासु चटर्जी ने इन दोनों को फुल फ्रीडम दी थी टू इम्प्रोवाइज। बॉम्बे की अलग अलग लोकेशन पे जाया गया जब बारिश हो रही थी और इस गाने को शूट किया गया, तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, इनका जो मेकअप था, वो सब ऐसे धुल रहा था बारिश में साथ साथ, लेकिन शूटिंग ऑन थी। तो पूरा का पूरा क्रू अलोंग विद दीज टू वो ऐसे हॉप कर रहे थे अलग अलग लोकेशंस पे गाना शूट करने के लिए, बिना किसी कोरियोग्राफी के, बिना किसी प्लानिंग के, और इसीलिए शायद वो इतना ब्यूटीफुल निकल कर आया है। तो सुन लेते हैं ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मिर्जा गालिब का ये शेर बड़ा अच्छा लगता है यार मुझे। और घर के ऊपर गुलजार साहब ने क्या लिखा है, आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। और एक और मुझे बहुत पसंद है, ये लिखा है उम्मीद फाजली साहब ने, ये सर्द रात ये आवारगी ये नींद का बोझ, ये सर्द रात ये आवारगी ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। होए होए, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन मिर्ची.

1969 की फिल्म दो रास्ते, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म ना राजेश खन्ना साहब की शुरुआती फिल्मों में से एक है, जहाँ पे स्टोरी ऐसे उनके आसपास रिवॉल्व नहीं करती है। इट्स अ फैमिली ड्रामा काइंड ऑफ अ थिंग। और इसमें आप इनका लुक भी देखें ना, तो ऐसे दाढ़ी बढ़ा के अनशेवन से घूमते रहते हैं, बिकॉज वो दो फिल्मों में इत्तेफाक और ये वाली फिल्म दोनों में साथ में काम कर रहे थे, तो दाढ़ी बनाने का टाइम ही नहीं था उनके पास, एक सेट से निकल कर दूसरे सेट में घुस जाते थे वो। अच्छा, ये फिल्म ना दिसंबर 1969 में रिलीज हुई थी और सुपर डुपर हिट हो गई थी। फिल्म अच्छी थी, लेकिन एक्चुअली इसको सुपर डुपर हिट कराने का थोड़ा सा क्रेडिट सितंबर 1969 में रिलीज हुई आराधना को भी जाता है, बिकॉज इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना साहब ऐसे धरती पछाड़ आसमान फाड़ सुपरस्टार बन गए थे। इनफैक्ट आराधना के ब्लॉकबस्टर होने का फायदा उसके बाद राजेश खन्ना साहब की रिलीज हुई काफी फिल्मों को मिला। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Hello.
2: Could I speak to Komal, please?
1: Speaking.
2: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
1: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
2: ओके.
1: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
2: राइट.
1: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
2: ओके.
1: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
2: हाँ.
1: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
2: कितने बजे गई थी आप?
1: 10:30 बजे.
2: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
1: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
2: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
1: मुझे बड़ी जरूरी काम
2: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
1: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
2: गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
1: आप एडवाइज, ये खुद गुस्से में हो.
2: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
1: आप हद से ज्यादा
2: हद से क्या बात कर रहे हैं?
1: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
2: ईव टीजिंग मैं आपको करूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
1: नहीं कर सकते आप.
2: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा और लड़कियों को कमेंट पास न करें. लड़कियों
1: की सुरक्षा की बात, लड़कियों सुरक्षा की बात
2: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागर फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो.
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर.
1: ओके ओके ओके
2: ओके ओके ओके मेरी बात सुनिए. कोमल, कोमल आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं नहीं 10:30 बजे? चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
1: ओके, कुकड़ू कू.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
0: Purani Jeans with Charu, only on

त्रिशूल फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है त्रिशूल फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए अमिताभ बच्चन साहब बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इस फिल्म के लिए उनको फिर अवार्ड नहीं मिला था क्योंकि उनको डॉन फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिल गया था उसी साल 1979 के फिल्म फेयर अवार्ड में। यस, दोनों फिल्म्स के लिए वो नॉमिनेटेड थे बट उनको अवार्ड डॉन फिल्म के लिए मिला। उससे पहले एक साल पहले अमर अकबर एंथनी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऑलरेडी वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुके थे। तो ये वो कंजेकेटिव ईयर्स थे जब बच्चन साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था 1978 and 79। एंड रिवाइंड टू 1975, बच्चन साहब की जमीर फिल्म का ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

ये तो हमें पता है कि शोले फिल्म ने बहुत अलग अलग फिल्मों से इंस्पिरेशन ली है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन सच फिल्म्स इज 1971 की सुपरहिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश। दोनों फिल्म में क्या सिमिलैरिटीज? दोनों फिल्म में एक डिसेबल्ड अथॉरिटी फिगर होता है जो गुड हार्टेड गुंडों को हायर करता है डाकुओं से लड़ने के लिए। मेरा गांव मेरा देश में सिर्फ धर्मेंद्र इस तरह के गुड हार्टेड गुंडे होते हैं, शोले में अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र। मेरा गांव मेरा देश में ये डिसेबल्ड अथॉरिटी फिगर का रोल प्ले करते हैं जयंत साहब, जो इंटरेस्टिंगली अमजद खान साहब के फादर थे, एंड शोले में ये रोल संजीव कुमार प्ले करते हैं। शोले में विलन का नाम गब्बर सिंह और मेरा गांव मेरा देश में विलन विनोद खन्ना का नाम जब्बर सिंह। चलिए मेरा गांव मेरा देश का ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: मालूम नहीं है हमसे सुनो।
1: शागिर्द फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सायरा बानो और जॉय मुखर्जी के बीच में बहुत ही फन बैंटर चलता था, बिकॉज जॉय मुखर्जी बहुत शरारती थे, प्रैंक्स करते रहते थे, और खास करके जब उनका सीन नहीं होता था, सायरा बानो का सीन होता था, तो उनको चिढ़ाते रहते थे, यू नो। एंड सायरा बानो गॉट सो सिक ऑफ हिज प्रैंक्स एंड हिज थिंग्स।

है वो सुलझाई जाती थी और शूटिंग बहाल की जाती थी। चलिए आप भी फिलहाल बहाल सी खुश सी स्माइल मुझे दे दीजिए, मुस्कान जो जाए कान तक और कान मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La virpa la burka. Mirchi, burka.
1: Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: मैं तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: तू चोरी करने के लिए गया?
2: तुमने पहले क्यों नहीं
1: बताया? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
2: एक बात सुन,
1: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
2: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है,
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

までに。

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और हो।

Radio Mitchie, New York. It's hot.

0: Milci. Iskrabana, poskrabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Navjedva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. I'm modern school se bol raha hu, aapke bete ke school se. How are you?
1: Thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
2: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: मतलब ये कोई गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा
1: धागा,
2: रेस
1: लगा लो,
2: दस
1: पत्ते तोड़े,
2: एक
1: पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े
1: दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
1: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: मिस्टर
2: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कोई सुनेगा तो
2: नहीं सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोने से पहले 3-2-1 रूल जरूर फॉलो करें। आइए जानते हैं कि ये रूल क्या है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अक्सर जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ, लेट्स से मैं यूएस गया, टाइम डिफरेंस आ गया, वापस आया, टाइम डिफरेंस आ गया, तो हम कहते हैं हम जेटलैग हो गए, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, बहुत हमारा बॉडी डिफरेंस हो जाता है, सर्कैडियन रिदम जो है वो बिगड़ जाता है। लेकिन मैं कभी कभी अचंभे में होता हूँ, ये कैसे कर लेते हैं, तो हमको भी कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर आर सप्लीमेंट्स जो आप खाते हैं, मेलाटोनिन बोल के है वो वगैरह होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बॉडी तो टोल तो लेता ही है उसका, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, ये इतना आसान जॉब भी नहीं है।
4: स्पिरिचुअल फील्ड में भी आप अगर देखेंगे, किसी को भी अगर आप देखेंगे, कोई प्रीस्ट है, मंग्स हैं, जो मेडिटेट भी रेगुलरली करते हैं, उनको भी जेट लैग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं पता है।
3: हाँ, ये कैसे होता है?
4: क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है, इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनको उतनी नींद चाहिए होती है जो फिजिकली उनको रिचार्ज करे। अगर आपके मन में बहुत ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, स्ट्रेस एंजाइटी है, वो भी तो बहुत टोल लेती है ना, बॉडी पर भी टोल लेती है, मन के ऊपर भी टोल लेती है, इसलिए कई बार कई घंटे सोने के बाद भी आपको फ्रेश फील नहीं होता।
3: The
4: other thing what happens is अभी जो एक चीज बहुत ज्यादा हो गई है because of which sleep हमारी जो है वो अच्छी नहीं है, स्लीप से पहले का जो समय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है,
3: वो वाइंड डाउन का टाइम होता है,
4: वाइंड डाउन का जो टाइम होता है, दोनों के लिए होता है, बॉडी के लिए भी। बॉडी के लिए तो शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं भी किसी ने सुना तो कहते हैं सोने से लगभग 4 घंटा पहले खाना बंद।
3: हाँ, वो 3-2-1 रूल है, 3 घंटे पहले आप खाना बंद करिए, 2 घंटे पहले आप जितने भी स्क्रीन्स हैं उसको, ब्लू रेज है उसको बंद कर दीजिए, और 1 घंटे पहले आप ऐसे पॉस्चर में आ जाइए जहाँ पे रूम डार्क हो जाए, थोड़ा कूल हो जाए, पढ़ना वढ़ना है तो बात अलग है, माइंड को वाइंड डाउन करना शुरू कर दीजिए।
4: 3 घंटा तो चलो बहुत है, लेकिन अगर आप 3 घंटा भी नहीं कर सकते फिर भी वी शुड बिगिन समवेयर। खाना भी अगर आपने रात को, रात का वो टाइम होता है जब बॉडी की भी हीलिंग होती है, आपके सारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, जो लंबा गैप होता है चाहे वो 10 घंटे का है, 12 घंटे का है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बीमार नहीं होंगे, जो आपने शुरू में कहा वो लोग की दे एज फास्ट स्लो, मतलब उनको आप देखेंगे कि जल्दी वो डिजीजेस नहीं होते हैं, या लॉन्जेविटी उनकी ज्यादा होती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बिकॉज बॉडी हील हो रही है ना। फॉर एग्जांपल आपका डिनर है 7-7:30 तक पूरा हो जाता है, अगर आप 10-10:30 तक सोते हैं वो भी लाइट,
3: बिल्कुल शाम का खाना लाइट होना चाहिए।
4: शाम का खाना अगर आपका लाइट होता है 7-7:30 मैक्सिमम अगर आपका डिनर कम्प्लीट हो जाता है, तो आपकी बॉडी को हीलिंग का टाइम मिलता है, आपके सारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, विच इज वेरी गुड। उससे बहुत बीमारियां नहीं होती, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अगेन कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे करें, ये पॉसिबल नहीं है, पर हो जाता है। आप अगर कोशिश करके 2 मील्स दिन में खाते हैं, मे बी अराउंड 12:30, अनदर वन एट अराउंड 6:30-7:30, इट इज पॉसिबल। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं 5-6 o'clock स्नैक होता है।
3: हाँ बिल्कुल होता ही है, भूख लग जाती है।
4: 9:30-10 पर एक हैवी डिनर होता है, विच इज नॉट गुड। फिर अगेन आप सुबह, आपके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी वो खाने को डाइजेस्ट करने में चली जाएगी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अच्छी नींद के लिए सही डाइट कितनी जरूरी है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कई बार डाइटिशियन बोलते हैं कि आप एक काम करो, अगर स्पेशली जब आप वेट लॉस करने जाते हैं, कि भाई अगर आप बड़े मील्स खाते हैं, ओवर ईटिंग की आदत है, आप एक काम करो हर दो दो घंटे में कुछ खाओ। लेकिन वो जो नहीं बोलते हैं, जो आपको समझना है कि वो दो दो घंटे में बड़े बड़े मील्स नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे मील्स होंगे तो आपके बॉडी को लगता है कि हाँ अब मैं सक्षम हूँ, मुझे जितना खाना चाहिए वो मिल रहा है। तो वो छोटे मील्स जो हैं, चाहे वो स्नैक ही हो, अगर 5 बजे स्नैक भी कर रहे हैं तो 7-7:30 तक अपना खाना खा के लाइट खत्म कर लेना है, और जो स्नैक भी वो छोटा ही स्नैक हो, एक बिस्किट हो या जो भी हो।
4: एब्सोल्युटली, मतलब बॉडी को आपको स्टडी करना, हमारी बॉडी को बहुत कम खाने की जरूरत होती है। वेरी ऑनेस्टली हमें लगता है कि इतना चाहिए होता है, पर हमें बहुत चाहिए नहीं होता। छोटे छोटे मील्स कई बार हम इसलिए खाते हैं, आजकल डाइजेशन बहुत पुअर है लोगों का, तो छोटा मील है, लाइट मील है, फास्टर डाइजेस्ट होता है। पहले कोई भी इतने छोटे छोटे मील खाता नहीं था
3: जी, बिल्कुल।
4: फिर तो आपको छोटे मील इतने प्रिपेयर करना और इतनी बार खाना, वो भी अपने आप में
3: पॉसिबल नहीं है,
4: हर बार पॉसिबल नहीं होता हर एक के लिए। सो नॉर्मली 2 मील्स अ डे एक बार पॉसिबिलिटी होती है
3: जी।
4: आप लाइट ब्रेकफास्ट है 12-1 o'clock के बीच में, लंच है बिटवीन 6 to 7:30, 6:30 to 7:30 के बीच में डिनर है, दैट इज स्टिल पॉसिबल फॉर लॉट ऑफ वर्किंग पीपल। अगर आप वर्क कर रहे हैं, आपके लिए उतना पैक करना अगेन लाइटर एंड पर है, ये छोटी चीज नहीं है। आप डाइट चेंज करेंगे, आपकी स्लीप बहुत इम्प्रूव हो जाती है। डाइट और स्लीप का आपस में बहुत कनेक्शन है,
3: बहुत।
4: जो आप सर्केडियन रिदम भी कह रहे थे, इसीलिए कहते हैं सनसेट से पहले जो हमारा डाइजेशन होता है वो मैक्सिमम एक्टिव होता है 2 o'clock के आसपास, 1 or 2 o'clock के आसपास। उस समय पर आप कुछ भी खा लें, लगभग पच जाता है आपका। अगर डाइजेशन भी वीक हो ना, तो भी आपको फिर ब्रेक करने पड़ते हैं मील्स। कम खाओ, कच्चा खाओ, रॉ खाओ, 2 घंटे बाद खाओ, पर वो भी बहुत एफर्ट लेता है। समवेयर ये भी एक अच्छा साइन है कि आप सब खा पाते हैं, बट प्रोपोर्शन में। Proportion is very important. Somewhere where we go wrong is, you know, we are eating 2 meals, but उसमें
3: बहुत
4: ज्यादा हो जाता है। So proportion is very important. Again, self control आ गया ना, हर चीज में आ तो self control जाता है, will power वहाँ भी तो लगती है ना। जैसे fasting है, कई बार लोग fasting क्यों करते हैं, fasting is also such a good way to increase your self control.
3: जी बिल्कुल,
4: अगर आप उसको उस तरह से करते हैं। अगर आप वैसे करते हैं, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, 5 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे, अगेन। लेकिन अगर आप उसको फास्टिंग को उस तरह से करते हैं कि ठीक है, एक दिन बॉडी को रेस्ट दिया, ऑर्गन्स को रेस्ट दिया, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होती है, ऑर्गन्स को भी रेस्ट मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है
3: जी।
4: जब हम किसी एक चीज में सेल्फ कंट्रोल बढ़ाते हैं, वो सब जगह बढ़ता है।
3: अच्छा,
4: वो संस्कार बन रहा है ना। मैं भले फास्टिंग खाने का कर रहा हूँ, दिखने में लग रहा है खाने का कर रहे हैं, पर आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है,
3: तो फिर वो बाकी जगहों पर भी दिखेगा
4: 100%। चाहे फिर वो आपका फोन यूसेज का कंट्रोल है, चाहे आपका कोई भी चीज है जहाँ आपको लगता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं है, कई सारी चीजें होती हैं, जैसे माइंडलेसली आप स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय फ्रेंड्स के साथ बिता देते हैं, बहुत लंबा लंबा फोन पर बात कर लेते हैं, कई चीजें हैं जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इसमें कंट्रोल होना चाहिए। वो एक संस्कार है, चाहे आपने हफ्ते में एक दिन फास्टिंग भी किया, तो भी आप सेल्फ कंट्रोल का संस्कार, एक अपना ट्रेट डेवलप कर रहे हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फास्ट या उपवास रखने से सेल्फ कंट्रोल और विल पावर कैसे बढ़ती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: फास्टिंग से सेल्फ कंट्रोल बाकी जगहों पर भी आसान बढ़ता है और हमको वो हेल्प भी करेगा।
4: कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आ रहा है ना आपके। आप उस दिन एक कर्मेंद्री को कंट्रोल कर रहे हैं, मुख को। आपके सामने कई चीजें हैं, कोई कहता भी है, आप कहते नहीं आज मेरा फास्ट है। आज मेरा फास्ट है। बहुत सारी चीजें आप कहते नहीं मेरा फास्ट है, तो आप खा सकते हैं पर आप नहीं खा रहे हैं। ऐसा नहीं अवेलेबल नहीं है, इट इज अवेलेबल बट यू आर चूजिंग। सेल्फ कंट्रोल का बढ़ता है जब आप चूज करते हैं, मजबूरी नहीं है
3: कि आज मैं नहीं करूंगा ये।
4: हाँ, मैंने चूज किया है, मैंने एक दिन के लिए ये चूज किया, खुशी से चूज किया है। I've chosen, चाहे वो एक दिन की फास्टिंग है, वो 9 days की है। अगर आप उसको खुशी से चूज करते हैं तो 100% आपका सेल्फ कंट्रोल विल पावर जो है वो बढ़ती है, मजबूरी नहीं होनी चाहिए।
3: नहीं, बहुत अच्छी बात कही। और आपने इंद्रियों की बात की तो मैं सोच रहा था कि फास्टिंग है कि हमने आज अपने मुख को या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दिया। कभी कभी पुराने जमाने में मैं देखता था, आजकल कम होता है लेकिन अभी भी होता है कि मौन व्रत होता है कि हम शब्दों का आज प्रयोग नहीं करेंगे। और मौन व्रत कहते हैं कि वो होता है कि आप साइन लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। आज मेरा बोलचाल बंद है, मेरी बोलचाल बंद है, उससे भी थॉट प्रोसेस में फर्क पड़ता है। फिर कभी कभी तो और इंद्रियों के, जैसे मैं आंखों के लिए कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। आंखों के लिए क्या ये होगा कि मैं आज सोशल मीडिया नहीं देखूंगा या मैं आज टीवी नहीं देखूंगा,
4: मैं आज किसी की कमी नहीं देखूंगा,
3: आज मैं किसी की कमी नहीं देखूंगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत,
4: करना चाहिए। इनफैक्ट ये एक वर्क प्लेस में हम ट्राई कर सकते हैं एक दिन के लिए। आज हमें हर एक की क्वालिटीज देखनी, आज हमें यू विल फील सो डिफरेंट बाय द एंड ऑफ द डे। जो ये ओवर थिंकिंग है, क्या है, आप सबसे मिल रहे हैं, आप बोलते कुछ नहीं है, पर किसी की कमी देख ली, किसी की देख ली, फिर अंदर में वो चल रहा होता है, बोल नहीं रहे। पर एक होता है बाहर बोलकर क्रिटिसाइज करना
3: और एक मन में चल रहा है,
4: मन में तो चल रहा है ना,
3: तो संस्कार तो बन गया।
4: आपकी बैटरी कितनी डिप्लीट हो रही है, माना आजकल हम फिजिकली थोड़ी ना थक रहे हैं,
3: मेंटली ज्यादा थकते हैं,
4: मेंटली थक जाते हैं। क्योंकि हम मेंटली किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक दिन ये भी एक व्रत लेकर के देखें, आज एक दिन गुस्सा नहीं करेंगे,
3: आज गुस्सा नहीं करेंगे, आज किसी की कमी नहीं देखेंगे। तो गांधी जी के जो 3 बंदर वो बड़े काम की चीजें हैं। आज हम बुरा नहीं बोलेंगे, किसी दिन हम बुरा नहीं सुनेंगे किसी के बारे में या खुद के बारे में, परिवार वालों के बारे में, और एक दिन किसी की कमियां नहीं देखेंगे। बहुत अच्छी बात है,
4: एक दिन करके देखें, बुरा नहीं सोचेंगे, शुरुआत वहां से होती है।
3: शुरुआत तो होना चाहिए, बुरा नहीं
4: बंदर
3: सोचेंगे।
4: इसको 4 बंदर करते हैं। और ये शिक्षा बंदर के लिए नहीं है,
3: हमारे लिए।
4: जब हम नहीं करते हैं
3: तब हम बंदर बन जाते हैं।
4: तो
3: बहुत अच्छी बात,
4: बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, पर बुरा नहीं सोचेंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नींद की कमी से हमारा दिमाग और शरीर किस तरह प्रभावित होते हैं, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि कई बार मैं लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं अरे वो मेरे फोन पे तो ब्लू लाइट फिल्टर है, तो अब मेरे ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि, क्योंकि अक्सर क्या होता है जो ब्लू लाइट जो होती है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि दिन है तो अभी सोने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है, राइस के दाने के शेप का होता है, वो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन सिक्रीट होने पर हमारे ब्रेन को पता चलता है कि अब सोने का वक्त हो गया। तो ब्लू लाइट क्या करता है, ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को बोलता है कि अभी तो दिन है तो अभी सोने की जरूरत नहीं है। तो जब हम कोई भी स्क्रीन है, ज्यादातर फोन से आता है, तो वो ब्लू लाइट बहुत सिक्रीट करता है। तो आजकल के फोन्स में ब्लू लाइट फिल्टर भी आता है, तो बहुत लोग तो उसको ऑन कर देते हैं। उसको ऑन करने से हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता

0: है कि भाई आपने अपने ग्लैंड की सिक्रीशन का ध्यान तो रख लिया, लेकिन अपने ब्रेन का ध्यान तो नहीं रखा, क्योंकि आप तो कंटेंट दिए जा रहे हैं।
1: कितना लॉज को डिफाई करेंगे हम? कुछ ना कुछ जो नियम बने हुए हैं, जैसे जल्दी उठना, अर्ली टू बेड,
0: अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज,
1: मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और चाहिए क्या?
0: बिल्कुल
1: हेल्थ चाहिए,
0: बिल्कुल
1: वेल्थ चाहिए,
0: बिल्कुल
1: विजडम चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: नर्सरी की राइम होती थी, अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चों को ये राइम भी नहीं पता, पर सिंपल चीज थी, इसके अंदर बहुत विजडम था। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, विजडम भी। तो अभी क्या हो गया, लेट नाइट है, अब आप समझो 11-12 बजे तक है, नॉर्मली माइंडलेसली भी स्क्रोल कर रहे होते हैं कई बार, वो इतना जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट बहुत अपलिफ्टिंग भी नहीं होता। मतलब ये है कि आप रात के समय खाना तो खा रहे हैं, पर आप जंक खा रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि अगर रात को आपको भूख लग जाए, बॉडी के लिए भी क्या कहते हैं, अगर आपको खाना ही पड़े सो ईट समथिंग हेल्दी, ईट एन एप्पल और ईट समथिंग जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो आप रात को कोई बहुत एम्पावरिंग कंटेंट तो नहीं ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर या रिलैक्सेशन के नाम पर हम वो अब्सॉर्ब तो कर रहे हैं ना। अब जब हम लास्ट मिनट तक उसको कंज्यूम करते हैं, हम सो जाते हैं, माइंड ऐसा है जैसे फिफ्थ गियर पर है, उसको वो सारा प्रोसेस करना पड़ता है,
0: उसको टाइम लगेगा,
1: काफी टाइम लगेगा।
0: जैसे हमारे बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, हमारे माइंड को भी डाइजेस्ट करने में समय लगता है।
1: इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो मन थका हुआ होता है,
0: बिल्कुल।
1: कई बार तो मन सोता ही नहीं है, सिर्फ शरीर सोता है, उठ जाता है मन, और हम वंडरफुल ये है कि हमारा मन इतने थके हुए मन से हम इतने कमाल कर रहे हैं।
0: हम सोचिए अगर हम सो जाते तो क्या
1: क्या ही होता। मैंने थके हुए मन से भी हर एक जा रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, वर्क प्लेस पर जा रहा है, बिकॉज समवेयर क्या होता है, ये भी आप यूज्ड टू हो जाते हो ना। एक टीचर है वो यूज्ड टू हो जाएंगे पढ़ाने के लिए, एक डॉक्टर है वो यूज्ड टू हो जाता है अपना वो करने के लिए, बट इट इज वेरी रिस्की इन सम प्रोफेशंस डेफिनेटली। आप सर्जन है, डॉक्टर्स में भी कई बार हम देखते हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, स्लीप डिप्राइव्ड हैं।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या नींद की कमी रोड एक्सीडेंट्स की एक बड़ी वजह हो सकती है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये सिर्फ ज्यादातर हम ऐसे प्रोफेशंस की बात करते हैं जहाँ पे वो बहुत ऐसा काम करते हैं जहाँ उनकी उनका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू रीड समथिंग आउट टू यू सिस्टर श्रेया, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, CDC की रिसर्च है, US में की गई थी कुछ सालों पहले। वो कहते हैं कि 35% अडल्ट्स जो हैं वो 7 घंटे से कम नींद उनको मिलती है, जब ये रिसर्च उन्होंने की थी। और इंडिया में जब ये रिसर्च की गई थी तो कहते हैं कि 59% ऑलमोस्ट 60% लोग जो हैं उनको 6 घंटे से कम नींद मिलती है। अब इसके रेपरकशंस क्या हैं उस पर देखते हैं। रेपरकशंस ये हैं कि 40% लोगों ने बोला है कि दिन में कभी कभी झपकियां आ जाती हैं हमको। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिस में अगर थोड़ी झपकी आ गई ठीक,
4: ऑफिस में ठीक है,
3: कभी होता है ना कि कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं, यही है। तो मैं यही कह रहा था कि वर्स्ट पार्ट यह है कि 5% लोगों ने बोला है कि वो गाड़ी चलाते चलाते उनको नींद आई है, झपकी आई है। अब एक और आपको एक छोटा सा फैक्ट देता हूं कि इंडिया में 11% रोड एक्सीडेंट्स ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से होता है, जिसके बारे में लॉज हैं, इसके खिलाफ लॉज हैं और बहुत सख्त लॉज हैं, लेकिन 40% रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप होते हैं, जिसके खिलाफ कोई लॉ नहीं बना है,
4: क्योंकि वो लाइफस्टाइल इशू है ना।
3: बिल्कुल। तो ये जो आप कह रही थी कि डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स नहीं, आपके हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है कि ढंग की हमको स्लीप मिले, क्योंकि इफ 40% रोड एक्सीडेंट सिर्फ लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये इमेजिन करता हूँ कि जो ट्रक ड्राइवर है जो चलाता है, कभी कभी 17-18 घंटे नॉन स्टॉप चला रहे हैं, उनके लिए कितनी, उनके लिए एक लाइफस्टाइल हैबिट हो गई, क्योंकि उनको एक शिपमेंट ड्रॉप करके दूसरा शिपमेंट लेना है और वो फिर सालों साल यही करते आते हैं। तो चाहे वो नाइट शिफ्ट हो, चाहे वो रोड ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो ऐसा बंदा हो जिसको रात को जाग के कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, ये बहुत अपने आप को बोलना जरूरी है, हेल्थ कम्स फर्स्ट,
4: सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। हमें कई बार लगता है कि नहीं, जैसे इवन यू नो समटाइम्स व्हेन वी मीट डॉक्टर्स एंड नर्सेस तो कहते हैं नहीं नहीं हमारा सारा समय पेशेंट के लिए, पर समवेयर अगर हम फ्रेश नहीं है इट इज ऑल्सो चीटिंग टू द पेशेंट।
3: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने,
4: क्योंकि आपसे गलती, आप देखें आज अगर कोई बड़ा सर्जन है कोई, आप जब कोई बीमार होता है पूरी शिद्दत के साथ उसके आगे आके सरेंडर कर देती है। एक मदर है, कोई भी अपने फैमिली मेंबर को 100% फेथ और ट्रस्ट के साथ वो उनको सरेंडर कर देती है, और वो जब सरेंडर करती है तो वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप अपना जो भी है बेस्ट देंगे। समटाइम्स मिस्टेक्स कब होने लग जाती है, देखो जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं है तो आपकी बॉडी भी तो उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्लो हो जाता है।
3: बिल्कुल।
4: कोई आपको डिसीजन लेना है, कोई आपको इमीडिएट उस समय पर रिस्पॉन्स आपका है वो सब स्लो हो जाता है, गलतियां होने के चांसेस हैं, कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाते।
3: बिल्कुल।
4: आपकी इनएफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, समवेयर इट इज चीटिंग टू दैट पर्सन।
3: बिल्कुल।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, आइए समझते हैं क्यों।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: टीनेजर था 17 साल का, कितने साल का मुझे याद नहीं है, कौन से शहर में था वो भी मुझे याद नहीं है। उसने एक स्टडी की थी अपने आप पे, 264 घंटे वो बिना स्लीप के गया, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, और उसने ये सारा डॉक्यूमेंट किया, इंटरनेट पे मिल जाएगा अगर आप खोजेंगे, कि दूसरे दिन मतलब 48 आवर्स के बाद उसको ऐसा लगने लग गया कि वो ड्रंकन स्टूपर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें,
4: ज़ॉम्बी
3: स्टेज हो रहा था एक्सेट्रा, लेकिन कहता है कि चौथे दिन तक मुझे हल्यूसिनेशन होने लग गए थे, मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो असल में हो रहा है,
4: ट्रू है कि इमेजिनेशन,
3: कि इमेजिनेशन, और बहुत सारी चीजें उसके आस पड़ोस में जब उसने बाद में पूछी, कहता है वो कह रहे थे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जो तुम इमेजिन करने लगे। तो रेस्ट कितना जरूरी है, और एक आप तो आपने ट्रस्ट की बात की, मैंने अपने आप पे भरोसा करके, भाई आप मेरा ख्याल रखेंगे, आप अपना बेस्ट करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला रेडी नहीं है, उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिली हो, उसने अपना ख्याल नहीं रखा हो, तो दूसरे पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, इस बारे में बोल बहुत अच्छी बात बोली।
4: इनफैक्ट अभी लॉज आने लगे हैं, हमेशा से कुछ लॉज इनके लिए तो होते ही हैं जो आपके
3: पायलट्स होते हैं,
4: पायलट्स के लिए तो कंपलसरी होता है इतना, यू नो समटाइम्स आई फील लॉज भी आपने बना लिए, कितने घंटे आपको सोना है, उतने घंटे आपको प्रोवाइड भी कर दिए, आप ऑनेस्ट हैं अपने लाइफस्टाइल के साथ।
3: इसके लिए सिस्टर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो ऑनेस्टी है, कभी कभी क्या होता है कि भेड़ चाल है या आज को जो हमने अपने लाइफस्टाइल बना लिया उस वजह से होता है, तो हाउ डू वी टेल पीपल, कैसे बताएं उनको कि क्यों जरूरी है।
4: कल मुझे किसी ने एक वो भेजा इमेज, आप फॉरवर्ड करते हैं ना, तो उस इमेज में सिंपल इमेज थी, उसमें एक साइड में लिखा हुआ था पिल्स एंड सर्जरी और बहुत लंबी लाइन थी, और दूसरी साइड पे लिखा था लाइफस्टाइल और लाइन ही नहीं थी। इट वॉज जस्ट एन इमेज विच स्पोक सो मच, पिल्स और सर्जरी में लंबी लाइन थी। तो आप उस लेवल पर आ जाते हैं कि आपकी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है, एंड यू रेडी टू टेक मेडिसिन एंड सर्जरी, चाहे वो स्लीपिंग पिल है, कुछ भी है, कितने प्रकार के हैं, बट आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने में विल पावर। अब जैसे स्लीप ही है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, हम तीन चीजें अगर ध्यान दें, किसी को भी अगर अपना स्लीप साइकिल ठीक करना है, पहला जैसे हमने फूड की बात करी,
3: खाना कम खाओ और बहुत पहले खा के बंद कर दो,
4: हाँ, मतलब आप जितने बजे भी सोते हैं, सोना भी हमें एक्चुअली 10 से 11 के बीच में लेटेस्ट है ये।
3: तो सोने के 3 घंटे पहले कोशिश करो कि खाना बंद हो जाए,
4: खाना कम और खाना लाइट,
3: राइट,
4: जितना हो सके खाना कम और खाना लाइट। सेकंड चीज जो हमने कहा कि ये तो बॉडी का खाना हो गया, मन का खाना भी
3: बंद करो, स्क्रोलिंग बंद करो, स्क्रीन सारे बंद कर दो,
4: कम से कम एक घंटा पहले। इनफैक्ट 1 घंटा पहले तो टोटल बंद हो जाना चाहिए, लेकिन जो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है वो घर आते ही बंद हो जाना चाहिए।
3: और वो कई बार बंद नहीं होता, आई थिंक हम जुड़े रहते हैं, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो कॉल्स हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चलता रहता है।
4: हमारा ब्रेन मल्टीटास्क करने के लिए नहीं बना है।
3: अरे वाह, क्या बहुत बड़ी बात कर दी आपने, हमारा ब्रेन मल्टीटास्क करने के लिए बना ही नहीं।
4: नहीं, इट इज अबाउट माइंडफुल हर चीज, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल वर्किंग, मतलब हम एक समय पर अगर एक चीज करते हैं तो बेस्ट हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं। खाने के समय सिर्फ खाना, सोने के समय सिर्फ सोना, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई एम ओनली टॉकिंग टू यू 100%।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: été.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: सोने से कुछ समय पहले सारी कम्युनिकेशन बंद करना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: ये बहुत जरूरी है सिस्टर, क्योंकि ज्यादातर इस पे तवज्जो नहीं दिया जाता, जोर इस पे दिया जाता है कि मल्टीटास्क करना जरूरी है, मल्टीफैसेटेड होना बहुत जरूरी है।
5: मल्टीफैसेटेड अलग है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज वन टाइम पर,
4: एक समय पर एक ही काम करो।
5: एक समय पर अगर हम एक करते हैं तो हमारी 100% प्रोडक्टिविटी है, जो आजकल हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा फोन वहाँ पे नोटिफिकेशन देता है, मैं देख नहीं रही हूँ,
4: लेकिन मेरा ध्यान वहाँ है,
5: ध्यान तो चला गया।
4: इसलिए कई बार रिलेशनशिप में बोलते हैं कि फिजिकली हुई है लेकिन मेंटली कहीं और है,
5: क्योंकि आंखों से पता चल जाता है आप वहाँ पर हैं। सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कॉन्वर्सेशन में, इट्स एन आई कॉन्टेक्ट। आप देख रहे हैं, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, सो आई विल सी सम चेंजेस ऑन योर फेस, एक्सप्रेशन पर कुछ दिखाई देगा, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं गया तो आप ब्लैंक हो जाएंगे एकदम। सो हम लोग, इट्स अबाउट माइंडफुल ईटिंग भी है, वो भी माइंडफुल होना चाहिए। 10 to 15 minutes लगता है। अभी ईटिंग भी क्या है, या तो ग्रैब अ बाइट टाइम ही नहीं है, या फिर मीटिंग ओवर लंच, मीटिंग मीटिंग है, लंच लंच है, लंच करके एक्चुअली मीटिंग होनी चाहिए। तो वो सब जो मल्टीटास्किंग हो गया है, इट इज अ टेकिंग टोल ऑन आवर माइंड आल्सो, बॉडी आल्सो। वर्क प्लेस से शुरू होना चाहिए, वर्क प्लेस वालों को भी जब घर भेजते हैं ना तो घर भेज देना चाहिए, भेज देना चाहिए 8 बजे के बाद। इफ यू वांट कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो फुली रेस्टेड आए, खुश आए अगले दिन वापस, तो 8 बजे के बाद कोई ईमेल नहीं, अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट। कुछ अगर बहुत अर्जेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका 7 o'clock, 8 o'clock कंप्लीट होता है, कंप्लीट है, उसके बाद जो अभी हो गया ना, 24/7 आपको फोन पर रहना है, 24/7 आपको अवेलेबल रहना है, कहीं कहीं जॉब्स में तो बहुत थोड़ा इनह्यूमेन जैसा ट्रीटमेंट हो गया है।
4: मुझे याद है, मैंने एक बॉस को अपने एक बार बहुत पुराना, मैंने कहा 24/7 को मैं अवेलेबल रहूंगा, 24 जुलाई को मेरे से बात कर लेना।
5: सम प्रोफेशंस वी कैन अंडरस्टैंड, आप सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं ना, उनका वो प्रोफेशन है,
4: बिल्कुल,
5: वो समवेयर उनकी पावर भी बढ़ जाती है उससे डील करने की। उनको जब रात को 3 बजे या 4 बजे फोन आता है ना, वो पैनिक नहीं करते,
4: क्योंकि उनकी आदत है, उनको पता है जरूरी है,
5: उनको पता है जरूरी है, उनकी बॉडी को, उनके माइंड को धीरे धीरे उस चीज की हैबिट हो जाती है, वो उतना उस चीज को अब्सॉर्ब नहीं करते, जैसे हम पैनिक कर जाएंगे वो पैनिक नहीं करेंगे, दे यूज्ड टू इट, उनको पता होता है। बट फॉर ऑल ऑफ अस, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन बंद हुआ, देन वी आर अवेलेबल फॉर आवर फैमिली 2 घंटा, हम अवेलेबल हैं, वहां से डिस्कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर अवेलेबल होंगे, और उसके बाद सोने से पहले तो टोटल डिस्कनेक्ट, आप फोन से भी डिस्कनेक्ट, लोगों से भी डिस्कनेक्ट। तो हमने पहली चीज जो करी, खाना जल्दी खाया,
4: खाना कम खाया और जल्दी खाया।
5: दूसरा जो हमने किया,
4: सारे स्क्रीन्स बंद कर दिए।
5: वेयर विद द फैमिली, सोशल इंटरेक्शन है, एनर्जी का एक्सचेंज है, टेक्नोलॉजी के साथ ही नहीं है, देन कम से कम 15-20 minutes अपने साथ बिताए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: HG Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक भाई साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरा जो बेटा है वो MBBS फोर्थ ईयर में है, मैं उसे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना कैसे सिखाऊं, वो रिएक्ट करता है आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनने से ही और बिल्कुल पसंद नहीं करता है सजेशन, और कभी कभी उसे ऐसा लगता है, वो कहता है कि ये ओल्ड पीपल के लिए, बूढ़े लोगों के लिए है, वो सुबह उठता भी नहीं है और ना ही जल्दी सोता है। अब मैं क्या करूं?
2: कहीं ना कहीं ये भी हमारी कंट्री में एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है कि स्पिरिचुअलिटी बूढ़े लोगों के लिए है या आफ्टर 60 है। ये बिल्कुल ऐसे कहना है कि पहले तो लाइफ के सारे एग्जाम्स दे लो और उसमें कहीं पास हुए कहीं फेल हुए और फिर पढ़ाई पढ़ेंगे कि वो एग्जाम्स कैसे देने थे। तो स्पिरिचुअलिटी एक वे ऑफ लाइफ आपको सिखाती है। अगर वो वे ऑफ लाइफ हम आज नहीं सीखते, बाद में जब कई लोग आते हैं ना हमारे पास भी, तो उनको बहुत बड़ा रिग्रेट ये रहता है कि हम पहले क्यों नहीं आए। अगर हम पहले आते तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे डील करते, रिश्तों में ऐसे चलते। सो अगेन, इसको ये माइंड सेट नहीं बनाए दैट इट इज फॉर ओल्ड पीपल, क्योंकि हम है ही स्पिरिट। वी आर अ स्पिरिचुअल बींग इन अ फिजिकल बॉडी। हम फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल बींग इन अ फिजिकल बॉडी है। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। सेकेंडली, हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। इंस्पायर करने का तरीका भी बहुत बोलने का नहीं होता, आप ये करो आप ये करो, ये जो कई बार थोड़ा नैगिंग जैसा हो जाता है बार बार, मुझे नहीं लगता आज की जेनरेशन पर ये बहुत वर्क करता है। पहले करता था कि नहीं वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन जो चीज़ वर्क करती है वो है किसी का ट्रांसफॉर्मेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फादर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जीते हैं और उनके अंदर का जो चेंज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो काम है, स्टेबल है, डिसीजन ले पाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ही किसी को इंस्पायर कर सकता है। तो इसीलिए अगर उन्होंने राय दे दी, उन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया, अभी वो ऐसा वे ऑफ लाइफ अगर बनाएंगे सो मे बी दैट विल इंस्पायर द चाइल्ड।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, उठ भी जाओ क्योंकि कॉफी से पहले अगर किसी पे ट्रस्ट करना है तो वो है मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अगले कुछ घंटों के लिए चाहे तुम्हारे ऑफिस जाने का ट्रैफिक हो या फिर तुम्हारा सबवे का प्लेटफॉर्म हो या किचन में टिफिन पैकिंग का चैंपियनशिप चल रहा हो, कंसिडर मी एज योर फेवरेट बैक सीट बेस्टी। यहाँ पर तुमको मिलने वाला है बॉलीवुड का तड़का, म्यूजिक, मस्ती, हंसी की अनलिमिटेड रिफिल्स, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया एंड थोड़ा सा अरे यार ये तो मेरा फेवरेट गाना है, ऐसे वाले बहुत सारे मोमेंट्स मिलने वाले हैं। साथ साथ में मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक भी है, एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अराउंड द वर्ल्ड की खबरें, वेदर अपडेट एंड ढेर सारी बकबक। तो अपना चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट सब कुछ तैयार कर लो, मेरे साथ चपक कर बैठ जाओ। मिर्ची मॉर्निंग्स हैज जस्ट ऑफिशियली बिगन। फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vieja la murga. Milchi, murga.
2: Hello.
3: Could I speak to Komal, please?
2: Speaking.
3: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: 10:30 बजे.
3: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
3: गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
2: आप एडवाइस, ये खुद गुस्से में हो.
3: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
2: आप हद से ज्यादा
3: क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की सुरक्षा की बात की
3: किस तरह की. नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर.
2: ओके ओके ओके
3: ओके ओके ओके मेरी बात सुनिए. कोमल, कोमल आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं नहीं 10:30 बजे?
2: मिस्टर, ये आप हैं
3: जी,
2: मैं मेरे को गुस्सा दिलाया. किसी दिन आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा.
3: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके कुकड़ू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो अब शुरू करते हैं हम बिना पासपोर्ट के टाइम ट्रैवलिंग। 1799 में इजिप्ट के राशिद विलेज में मिली रोजेटा स्टोन, जिसने एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स का पासवर्ड ही क्रैक कर दिया। फिर 1945 में न्यू मेक्सिको में हुआ ट्रिनिटी टेस्ट, दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, एक ऐसा दिन जिसने साइंस और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों की डायरेक्शन बदल दी। 1965 में नासा के मरीनर 4 ने मार्स की पहली क्लोजअप फोटोज भेजी। 1996 में लॉन्च हुआ MSNBC 24 आवर न्यूज चैनल। 2009 में स्पेस शटल एंडेवर उड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कीबो मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। और फुटबॉल लवर्स, 2018 में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप जीता। आलेले ब्लू, यानी कि कम ऑन द ब्लू, ये उस साल का शॉर्ट एंड सिंपल इम्पॉसिबल टू फॉरगेट फैंस का चैंट बन गया। और फैंस का कहना था अगली बार पक्का। And that's it for your time traveling journey with me, Priscilla on Mirchi Mornings. अब चलते हैं थोड़े मिर्चीदार bangers सुनते हैं। तब तक तो मुझे follow करो। Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp पर number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. फिलहाल के लिए stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो द मिर्ची मॉर्निंग्स। और चाय गर्म है, ट्रैफिक स्लो है, लेकिन फीवा का टेम्परेचर जो है फुल ऑन हाई है।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर अपनी सिर्फ दूसरी फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली है। मिकेल ओयात्सबाल ने 22nd मिनट में पेनल्टी कन्वर्ट की और पेड्रो पोरो ने सेकंड गोल मार के फ्रांस का 3 फाइनल्स इन अ रो वाला ड्रीम फुल टाइम पर ही पैक कर दिया। स्पेन अब 37 मैचेस से अनबीटन है और ओयात्सबाल टूर्नामेंट में अपने 5 गोल्स के साथ स्पेन के वर्ल्ड कप हिस्ट्री बुक्स में डेविड विला एंड एमिलियो बूत्रागेनियो के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। और फ्रांस के कैप्टन किलियन एम्बापे, जो टूर्नामेंट में 8 गोल्स के साथ गोल्डन बूट रेस में टॉप पर हैं, इस मैच में स्कोर नहीं कर पाए। एंड दूसरी खबर ये है कि अर्जेंटीना सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि 500 किलो से ज्यादा अपना देसी स्टाइल बीफ भी कैंसर सिटी बेस कैंप ले आई है। लोमो एंट्रानिया मतांबरे, फुल ऑन बारबेक्यू सीन चल रहे हैं भाई। मोटिवेशन लेवल इज होम का खाना, तो होम का खाना ही होता है। और तीसरी खबर ये है कि सोशल मीडिया पर 9 मिलियन से ज्यादा सिग्नेचर्स वाले एक ऑनलाइन पिटिशन में कुछ फैंस अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप से बाहर करने की डिमांड कर रहे हैं, अलेजिंग रेफरिंग बायस इन फेवर ऑफ लायनल मेसी एंड अर्जेंटीना। ये याद रहे कि एक फैन ड्रिवन ऑनलाइन पिटिशन है, इसका टूर्नामेंट या फीफा के डिसीजन पर कोई ऑफिशियल असर नहीं है। फुटबॉल में इमोशंस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक चलते हैं, जस्ट लाइक एवरी अदर स्पोर्ट। अब देखना ये है कि स्पेन फाइनल में इंग्लैंड से टकराएगी या अर्जेंटीना से। और आज है ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल, इसलिए फटाफट से मुझे फॉलो कर दो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टेम्परेचर का हाल चाल सुनने वाले हो, यानी कि वेदर अपडेट। अभी फिलहाल हो रहा है 75 डिग्री फारेनहाइट, सनशाइन फुल अटेंडेंस पर है, हवा चल रही है सनन, इसीलिए फील हो रहा है 74 डिग्री फारेनहाइट के आसपास, यानी कि एसी ने आज थोड़ा सा ओवर टाइम कर दिया है। देखो सुबह 10-11 बजे तक थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी स्काइज दिखने वाले हैं, लेकिन 2 बजे के आसपास क्लाउड्स जो है वो थोड़े से और ज्यादा गैदर हो जाएंगे। मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में रेन का जीरो चांस है। हाँ जी, 0 मिलीमीटर प्रेसिपिटेशन है, मतलब कि अम्ब्रेला आज भी पेड लीव लेकर घर पर बैठ सकता है। लेकिन ये सुनो कि आफ्टरनून में टेम्परेचर सीधा 96 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच सकता है, और कल से भी ज्यादा गर्म होने वाला है आज का दिन। कल का हाई था 91 डिग्री फारेनहाइट और आज 96 डिग्री फारेनहाइट तक जाने वाला है, मतलब कि वेदर कह रहा है आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग फीफा वाला हीट। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आज एक्सट्रीम हीट वार्निंग है और एयर क्वालिटी अलर्ट दोनों ही इफेक्ट में है। इसका मतलब यह है कि बाहर जाना जरूरी नहीं है तो घर पर बैठो, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करना बनता है, साथ में सनस्क्रीन लगाना बनता है और साथ में लाइट कलर के कपड़े पहनना बनता है। और अगर पॉसिबल हो तो आफ्टरनून की डायरेक्ट धूप से थोड़ा सा बचकर रहो, स्पेशली बच्चे और सीनियर सिटीजन जिन्हें बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वो ना जाएं। प्लीज टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योरसेल्फ and your loved ones. वैसे भी यार गर्मी पड़ते ही इंडियन मम्मीज का एक फेवरेट डायलॉग है, और घूमो बाहर तबीयत खराब हो जाएगी। एंड इफ यू रिलेट टू दैट, फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट, क्योंकि आने वाले मिर्ची दे आर बैंगर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब आने वाली है खबरें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले अमेरिका में सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट ने हाउस से ग्रीन सिग्नल ले लिया है। अगर ये बिल सेनेट से भी पास हो गया तो हर साल क्लॉक्स को आगे पीछे करने का ड्रामा खत्म हो जाएगा। मतलब कि स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक की मैथ क्लास से परमानेंट छुट्टी हो सकती है। लेकिन होल्ड ऑन, अभी सेनेट की अप्रूवल और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही ये लॉ बनेगा। एंड नंबर टू पर इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन अपनी पहली स्पेस मिशन के लिए सोयूज MS-29 से सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ कर चुके हैं और अगले 8 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च करेंगे। AI असिस्टेड मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी होने वाले हैं वहां पर। एंड फाइनली स्पोर्ट्स से, इंडिया ने एच बैस्टन में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया और उनका 11 इयर्स का ODI अनबीटन होम स्ट्रीक वहां पर स्टॉप हो गया है। कैप्टन शुभमन गिल ने क्लासी 80 रन्स बनाए। अक्षर पटेल ने ऑलराउंडर धमाका किया है, 4 विकेट और अनबीटन 57 का। और वॉशिंगटन सुंदर के साथ मैच विनिंग पार्टनरशिप करके इंडिया को लगातार 6th ODI विन भी दिला दिया है इंग्लैंड के खिलाफ, काफी देसी स्टाइल में। एंड दैट्स द एनर्जी वी नीड इन स्पोर्ट्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अभी के लिए मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. I'm modern school se bol raha hu, aapke bete ke school se. How are you?
1: Thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ, नहीं लगता उसका।
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: मतलब गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
1: आओ मिलो,
2: चिलो चलो,
1: चलो,
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा,
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े,
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
1: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: मिस्टर
2: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कुछ
2: नहीं, सर ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। फीफा वर्ल्ड कप से नॉर्वे का सफर क्वार्टर फाइनल्स में खत्म हुआ, लेकिन हॉलैंड ने मूड को ऑफसाइड नहीं होने दिया है। वर्ल्ड कप के एग्जिट के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड इजाबेल जोहानसन के साथ इटली के ब्यूटिफुल सिसिली में डोल्चे एंड गबाना ऑल्टर मोडा फैशन शो अटेंड करते हुए नजर आए हैं। बोथ वर ट्विनिंग इन एलिगेंट व्हाइट आउटफिट्स। हॉलैंड लुक्ड सुपर शार्प इन क्लासिक टेलरिंग एंड इजाबेल ने क्रिस्टल एम्बर गाउन में फुल रेड कार्पेट वाइब्स दी। मतलब कि फुटबॉल पिच हो या फैशन रनवे हो, स्टाइल का स्कोर तो इनका 10-on-10 ही रहने वाला है। और वैसे भी हम देसी लोगों का एक रूल तो पक्का है, शादी हो, फेस्टिवल हो या फैमिली फंक्शन हो, एक अच्छा आउटफिट कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली 3000% बढ़ा ही देता है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि हॉलैंड काफी देसी है। स्पीकिंग ऑफ लुकिंग योर बेस्ट, अगर तुम किसी की वेडिंग, एंगेजमेंट या स्पेशल सेलिब्रेशन की शॉपिंग प्लान कर रहे हो, स्पेशली ज्वेलरी से रिलेटेड, तो आरके ज्वेल्स लेकर आए तुम्हारे लिए स्पार्कलिंग ऑफर। एक्सक्विजिट ज्वेलरी कलेक्शन के साथ $250 का अमेजिंग गिफ्ट कार्ड एब्सोल्युटली मुफ्त मुफ्त मुफ्त, यानी कि फ्री मिल रहा है। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस जहां पर मिलता है उसको कहते हैं आरके ज्वेल्स। क्योंकि शाइन सिर्फ डायमंड्स की नहीं होती, बल्कि तुम्हारी स्माइल में भी शाइन होनी चाहिए। पहुंचो वहां पर फटाफट से और अभी बने रहो यहीं पर, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: SFG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: A very happy birthday to everyone celebrating today. बोले तो 15th of July को. मेरा नाम है Priscilla and this is Mirchi Mornings. और अगर आज तुम्हारा happy वाला birthday है, तो remember, तुम सिर्फ एक साल बड़े नहीं हुए हो, बल्कि officially और legendary हो गए हो. और पता है आज तुम्हारे साथ अपना special day कौन से celebrities share करते हैं? सबसे पहले है Oscar winning actor Forest Whitaker, talented actress Diane Kruger, comedian Gabriel Iglesias, जिन्हें दुनिया प्यार से fluffy भी कहती है, legendary सिंगर लिंडा रॉनस्टैट एंड ब्रायन ऑस्टिन ग्रीन. सबका बर्थडे आज ही के दिन है तुम्हारे साथ साथ. हिस्ट्री लवर्स के लिए भी बोनस है, आज के दिन जन्मे थे वर्ल्ड फेमस डच पेंटर रेम्ब्रांट वैन राइन, जिनकी पेंटिंग्स आज भी मास्टरपीसेस मानी जाती हैं. और वुमेन्स राइट्स मूवमेंट की एक फियरलेस लीडर एमेलिन पैंकहर्स्ट, जिन्होंने हिस्ट्री में एक पावरफुल चैप्टर लिखा है. तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है, क्रिएटिविटी टैलेंट लाफ्टर से भरपूर हो तुम और करेज कूट कूट कर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, अब बस केक पर कैंडल्स लगाओ और कैलोरीज को भूल जाओ और विश ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए. मेरी तरफ से भी दुआ है कि आने वाला साल तुम्हें हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस और बहुत सारी खुशियां दे जाए. और हाँ, मुझे तुम अपने बर्थडे शाउट आउट, बर्थडे इनवाइट्स या फिर बर्थडे केक के पिक्चर्स भेज सकते हो. मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी चलाती हूँ तुम्हारे लिए एक बर्थडे का मिर्ची दैट बैंगर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

ठंडक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमऊ बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: तेरा सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: हार्ट बीट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची आवर का 3 ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले साइबर वर्ल्ड से एक सीरियस अपडेट। रिपोर्ट्स के हिसाब से रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने इंडिया के कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और अलेजेड फैसिलिटी ब्लूप्रिंट्स डार्क वेब पर पोस्ट किए हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हुए तो सिक्योरिटी कंसर्न्स को सीरियसली इवैल्यूएट करना जरूरी होगा। नंबर 2 पर इंडिया ने पैलेस्टाइन के लिए 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक आर्टिफिशियल लिम्ब फिटिंग सेंटर और एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पैलेस्टाइन की एम्बेसी ने इस अनाउंसमेंट के लिए इंडिया का पब्लिकली शुक्रिया अदा किया है। एंड फाइनली सोशल मीडिया से एक वायरल स्टेटमेंट में बलूचिस्तान की तरफ से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना क्लेम किया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस क्लेम की अभी तक कोई ऑफिशियल या इंटरनेशनल वेरीफाइड कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है और किसी रिकग्नाइज गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बॉडी ने इसे फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया है। दिस इज अबाउट बलूचिस्तान डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। फिलहाल ये स्टोरी अभी डेवलपिंग सिचुएशन में है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello. Hello.
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर, रमेश इसे बंद कर दे। यार आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन, यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने के लिए
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
2: मेरी बात सुन,
1: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: मेरी बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था। आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुबह का चाय, नाश्ता, पानी सब कुछ हो चुका है, तो अब जरा सितारों की सुन ले।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज रियलिटी को फेस करना ही सुपर पावर है। जो बात अवॉइड कर रहे थे उसको आज टैकल करो। लकी कलर फॉर यू इज येलो एंड लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पुराने तरीके कंफर्टेबल हैं, लेकिन अपग्रेड ही ग्रोथ है। आज एक नया अप्रोच ट्राई करो। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, न्यू डायरेक्शन से मत डरो यार, आज एक बोल्ड डिसीजन फ्यूचर का फेवरेट मेमोरी बन सकता है। लकी कलर फॉर यू इज मैजेंटा, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, दिल के किसी कोने में एक ओल्ड फियर बैठा हुआ है, उसको एविक्शन नोटिस भेजने का परफेक्ट डे है आज। लकी कलर फॉर यू इज डार्क ब्राउन, लकी नंबर इज 18। लियो यानी कि सिंह राशि, आज अपनी आवाज कॉन्फिडेंटली उठाओ, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, अर्न भी होती है और कभी कभी रिमाइंड भी करनी पड़ती है। लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, फैक्ट्स रेडी रखो, अगर डिबेट करनी पड़े तो गूगल मत बनो, गूगल से भी तेज और ज्यादा प्रिपेयर रहो। लकी कलर फॉर यू इज मरून, लकी नंबर इज 14। एंड ये था राशि जोन का पार्ट 1। और ये याद रखो, हॉरोस्कोप डायरेक्शन देता है, डेस्टिनेशन तुम खुद डिसाइड करते हो। राशि जोन का पार्ट 2 लेकर आऊंगी मैं थोड़ी सी देर में, तब तक तुम मिर्चीदार बैंगर सुनो और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मेरा नाम है प्रिसिला और अब हम कंप्लीट करने वाले हमारा बचा हुआ राशि जोन
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, चॉइसेस बहुत हैं लेकिन फर्स्ट इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करो. दिल कभी कभी जीपीएस से बेटर काम करता है. लकी कलर फॉर यू इज ग्रे. लकी नंबर इज 6. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज कंफ्यूजिंग चीजें फाइनली क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. ओल्ड माइंडसेट को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है. लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 21. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज लाइफ का प्लॉट ट्विस्ट बन सकता है, बट क्यूरियोसिटी का वॉल्यूम हाई रखो. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 32. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म ही आज का सुपर हीरो केप है. लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 11. एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, क्रिएटिव आइडियाज की बारिश होगी आज. बस एक्साइटमेंट में ओवर एक्टिंग मत कर देना, मॉडरेशन भी एक टैलेंट होता है. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 27. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, जो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन पेंडिंग है आज उससे फेस करो. कभी कभी पीस का शॉर्टकट ऑनेस्टी से होकर जाता है. लकी कलर फॉर यू इज एक्वा ग्रीन. लकी नंबर इज 3. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 2. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स. कीप वाइबिंग विद मी ऑफलाइन एज वेल. सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करो. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और बस आज का मिर्ची मॉर्निंग्स भी अपने कुछ बचे हुए गानों की तरफ बढ़ रहा है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड ऑनेस्टली तुम्हारे साथ ये मॉर्निंग ड्राइव कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता है। लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ अपडेट देकर जाती हूँ। अगर तुम क्रिस्टोफर नोलन के बर्थडे वाले फैन हो ना मेरी तरह, तो ईयर्स ओपन। उनकी अपकमिंग फिल्म द ओडिसी सिर्फ स्टोरी के लिए ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के लिए भी हेडलाइंस बना रही है। आखिर नोलन की फिल्म है यार। दुनिया भर में सिर्फ 41 थिएटर्स ऐसे हैं जो इस फिल्म को IMAX 1570 फिल्म फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। ये वही अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन फॉर्मेट है जो नोलन पर्सनली प्रेफर करते हैं। और फन फैक्ट ये है कि मूवी शूट करते वक्त ना फिल्म रील लगभग हर 3 मिनट के बाद चेंज करनी पड़ती थी, मतलब कि पेशेंस लेवल इनका 3000 से ऊपर है। तो अगर तुम लकी हो जिनको ये थिएटर मिल जाए और देखने का चांस मिले, तो पॉपकॉर्न बड़ा वाला टब लेकर जाना, क्योंकि इतनी विजुअली स्टनिंग फिल्म में बीच में उठकर पॉपकॉर्न लेने तो नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें, राइट? अब जाने की बात हो ही रही है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम आज अपना दिन फुल ऑन स्माइल के साथ जियो, खाओ पियो ऐश करो। प्रिसिला की तरफ से टाटा बाय बाय, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। ऑफ कोर्स मुझे मिस करोगे तो मुझसे बातें करने के लिए इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
3: स्पीकिंग।
4: कोमल हाय, आई एम रवि। हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
3: लगता क्या है, बिल्कुल ऐसा है।
4: ओके
3: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं। इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है। इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ। मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को।
4: ओके
3: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी।
4: हाँ।
3: तो वहाँ मुझे छेड़ा।
4: कितने बजे गई थी आप?
3: 10:30 बजे।
4: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
3: मेरे को एक काम था वहाँ पे।
4: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
3: मुझे बड़ी जरूरी काम
4: नहीं था। कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं। आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे, आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
3: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो।
4: गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए आप लड़कों को बुरा कहती हैं। आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
3: ये खुद गुस्से में हो,
4: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
3: आप हद से ज्यादा
4: हद से क्या बात कर रहे हैं?
3: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं।
4: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा। मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ,
3: नहीं कर सकते आप।
4: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
3: की सुरक्षा की बात, लड़कियों सुरक्षा की बात कर रहे हैं।
4: किस तरह की नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप साकेत?
3: फोन
4: रखिए आप, बेकार की बात। हेलो
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ई टीजिंग को लेकर।
3: ओके ओके ओके ओके ओके ओके
4: ओके मेरी बात सुनिए कोमल। कोमल कोमल कोमल आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है। मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ। आप साकेत क्यों कहीं थी 10:30 बजे?
3: मिस्टर ये आप हैं
4: जी,
3: मैंने आपको गुस्सा दिलाया, आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा।
4: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ। मेरे साथ जरा हंस के बोल।
3: ओके कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

0: कभी तो हंसाए।
1: कर्ज मूवी का जो आइकॉनिक सॉन्ग है ओम शांति ओम, उसमें ना एक बहुत बड़ा गूफ अप है। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब गाने के शुरुआत के 5-6 सेकंड में ही आपको ये गूफ अप देखने को मिल जाएगा। जैसे ही गाना स्टार्ट होता है तो स्टेज दिखाया जाता है जहाँ पे ऋषि कपूर परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। पीछे बैनर पे लिखा होता है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, और फिर अगले शॉट में स्टेज के सामने की ऑडियंस को दिखाते हैं, उनके पीछे जो बैनर लगा हुआ है वो कहता है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। ऑप्शन दिया गया है जो दिल करे आपका मना लो। हो जाती है गलतियां यार, होता है, चलता है, दुनिया है। फिलहाल ब्रेक है पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया। कभी किसी को

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
4: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

मिस्टर नटवर लाल फिल्म का ये गाना, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, रेखा थी और एक वन साइडेड लव स्टोरी थी। जी मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वन साइडेड लव स्टोरी थी एक टाइग्रेस की, जिसने इस फिल्म में काम भी किया है। आप इस फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स देखेंगे तो उस टाइग्रेस को, जिसका नाम भारती था, उसे प्रॉपर क्रेडिट्स भी दिए गए हैं। तो फिल्म का सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि काफी सीन्स में ये टाइग्रेस सेट्स पे थी। अब जिस वन साइडेड लव स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ, वो इस टाइग्रेस को हो गया था जी इश्क हमारे बच्चन साहब से। बच्चन साहब जब सेट पे आते थे, खाना खाते थे, उसके बाद ही अपना खाना खाती थी, वरना खाना नहीं खाती थी। हाउ अडॉरेबल इज दैट। आपने फिल्म देखी है तो आपको पता है, नहीं देखी आपने फिल्म तो आप जाके देख सकते हैं और ये लव स्टोरी इमेजिन कर सकते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

जाबाज फिल्म का वो गाना तो आपको पता है, बहुत ही रोमांटिक गाना, जब जब तेरी सूरत देखूं प्यार सा दिल में जागे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक डुएट सॉन्ग है, लेकिन ज्यादातर इस गाने में सिर्फ फीमेल सिंगर को क्रेडिट दिया गया है, सपना मुखर्जी को। मेल सिंगर का कहीं नाम ही नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि इसके सिंगर हैं महेश गढ़वी, जो गुजराती फोक एंड लिटरेचर की बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी लेट मनुभाई गढ़वी जी के भाई रहे हैं, और बॉलीवुड में उन्होंने एक दो फिल्मों में गाया। उसके बाद वो और उनकी वाइफ, जिनका नाम आई थिंक नीतू जी है, ये अब्रॉड में स्टेज शोज, लाइव शोज, ये सब करते रहे हैं। लेकिन थोड़ी हैरत वाली बात है कि उनको क्रेडिट नहीं दिया गया है, जबकि उन्होंने जाबाज फिल्म के एक दो गाने और गाए हैं। एक तो एक जो कवाली है उसमें वो भी उन्होंने गाई है, और जाबाज का जो थीम सॉन्ग है वो भी गाया है। और मुझे ना बहुत टाइम तक लगता था कि इसमें सपना मुखर्जी के साथ मनहर जी की आवाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनीवे, ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

वाह वाह, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। मैं जानती हूँ ये कहने के लिए बहुत गलत घड़ी है कि हमारे घर में आज जो बनी थी वो पकौड़ा कड़ी है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। थोड़ा सैड गाना हो गया था, मैंने कहा मूड लाइट कर लेते हैं। पकौड़ा कड़ी गर्मा गर्म साथ में जीरे वाले चावल, सलाद और आलू की सब्जी, वाह वाह, ये था मेरा लंच। अच्छा, गम से खुशी की ओर बढ़ते हैं, उसी के साथ एक शेर भी सुनो। शमीम करहानी नाम के शायर हैं, उनका शेर है, ये खुशी गमे जमाना का शिकार न हो जाए, ये खुशी गमे जमाना का शिकार न हो जाए, न मिलो ज्यादा हमसे कहीं प्यार न हो जाए। लव इश्क प्यार मोहब्बत के साथ अगला गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो हेलो
3: भैया, आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज?
4: भाई साहब, आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दिए? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी, इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: चोरी करने के लिए गया?
4: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
3: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
4: बात सुन,
3: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
4: बात सुन।
3: हेलो
4: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: अब ठीक है।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

उफ क्या ही गाना है ये, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलजार साहब ने लिखा है, और कई बार ना ऐसा होता है कि पूरा गाना ही बहुत बढ़िया होता है, बहुत सुंदर लिखा होता है, लेकिन कुछ लाइंस ना आपका दिल छू जाती हैं। आप बहुत कनेक्ट करते हो उन लाइंस से, कई बार आपको भी नहीं पता होता कि क्यों आप कनेक्ट कर रहे हो, ऐसी कौन सी याद है जो ताजा हो गई है, ऐसा कौन सा घाव है जो फिर से हरा हो गया है लाइंस को सुन के, या समथिंग अबाउट दोज लाइंस जो आपको बहुत पसंद आ जाती हैं। जैसे इसमें मैं बताऊं आपको कौन सी लाइंस मुझे पसंद है, कहीं किसी रोज यूं भी होता हमारी हालत तुम्हारी होती, जो रात हमने गुजारी मर के वो रात तुमने गुजारी होती। उफ गुलजार साहब, वाह वाह वाह। अच्छा, अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं उसकी भी कुछ लाइंस हैं, मजरू साहब के लिखी हुई। तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी। सुन लेते हैं अभिमान फिल्म का ये गाना, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: तेजाब फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनको इस बात का एहसास कब हुआ कि वो इतनी पॉपुलर हो गई हैं? सुनिए एक बार एक टेलीविजन शो पर उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे हम लोग, बाहर आए तो सडनली एक बच्चा बोला, ए वो थे हीरोइन ही हीरोइन ही। तो भाग के आए दोनों। मैंने बोला, अरे मुझे पहचाना। फिर बोलता है, मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया तो एम से सिग्नेचर किया मैंने। तो दूसरे को बोलता है, देख देख एम है, मोहिनी मोहिनी।
0: तो तेजाब की मोहिनी का ये आइकॉनिक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

जय किशन दया भाई पांचाल यानी कि शंकर जय किशन वाले जय किशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई इनका जन्म गुजरात में हुआ था और बचपन से इनको संगीत का शौक था। थोड़े थोड़े बड़े हुए तो हारमोनियम बजाने लग गए। माता पिता ने इनका टैलेंट देखकर इनको संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू की। कई गुरुओं से इन्होंने संगीत सीखा। फिर जब टीनेजर ही थे तब ये बॉम्बे आ गए, वहां पर भी इन्होंने संगीत सीखा। वहीं पर ये मिले अपने ढेंटड़ेन जोड़ीदार शंकर से। ये दोनों भाइयों ने मिलके जो म्यूजिक बनाया है वो गाने मतलब एंथम बन गए। जैसे कि ये अगला गाना जिसने पता नहीं कितनी सारी शादियों में दुल्हन की एंट्री करवाई है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और गाने गाने पे लिखा है इसे फिल्म में लाने वाले का नाम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। द क्लासिक सॉन्ग खई के पान बनारस वाला, ये ओरिजिनली देवानंद साहब की फिल्म बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था, लेकिन उस फिल्म की पेस से ये मैच नहीं कर रहा था तो ये गाना वहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया। फिर डॉन फिल्म की पेस जो है सेकेंड हाफ में, उसमें एक ब्रीदर, एक कॉमिक रिलीफ सॉन्ग चाहिए था, तब इस गाने को इस फिल्म में इंक्लूड किया गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
3: थैंक यू
4: अतुल। वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
3: आई नो वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
4: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो
3: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
4: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
3: मतलब ये गेम है क्या? ये
4: आओ मिलो शिलो शालो
3: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
3: आओ मिलो
4: शिलो शालो
3: शालो
4: कच्चा
3: धागा
4: रेस
3: लगा लो
4: 10 पत्ते तोड़े
3: 10 पत्ते तोड़े
4: 1 पत्ता कच्चा
3: 1 पत्ता कच्चा
4: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा आप तेज से बोलेंगे। 10 पत्ते तोड़े या मिस्टर श्रीवास्तव 10 पत्ते तोड़े 10 पत्ते तोड़े
3: 10 पत्ते तोड़े
4: हिरण का बच्चा हिरण का बच्चा सब हिरण का बच्चा
3: ओके सॉरी सॉरी हिरण का बच्चा
4: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू
4: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को
3: श्रीवास्तव
5: बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
3: यार ये कोई सुनेगा
5: तो सर ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

0: यूजुअली एक्टर्स से पूछो कि उनका चाइल्डहुड एम्बिशन क्या था, तो वो यही बोलते हैं कि एक्टर बनना था, एक्ट्रेस बनना था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जीनत अमान जी। वो जब छोटी थी तो क्या बनना चाहती थी, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक लिंग्विस्ट बनना चाहती थी, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखकर एक इंटरप्रेटर बनना चाहती थी इन द यूनाइटेड नेशंस। That's really what I wanted to do. I wanted to learn German. Of course, I knew English. Knew a very poor smattering of Hindi. And in school, it was compulsory. Compulsory tha ki hum log French seekhein. To, you know, maine socha ki 5-6 languages seekh lungi aur interpreter ban jaungi.
0: Well, jo unhone socha tha, wo to ye nahi bani. Lekin phir uske baad Miss India Asia Pacific bani, Miss Asia Pacific International bani, phir actress bani, the OG diva of Hindi film industry. क्या ग्लैमरस, क्या हॉट, उफ, ज़ीनत अमान। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

ये तो आपको पता है कि किशोर कुमार जिस शहर में पले बढ़े वो है मध्य प्रदेश का खंडवा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वहाँ उनके कई दोस्त थे, उनका बचपन का एक खास दोस्त था जिनका नाम था बाबू फतेह मोहम्मद, जिनका काम रंगरेजी का था और किशोर दा उनको प्यार से बाबू रंगरेज बुलाते थे। तो ऐसी एक स्टोरी, एक इंसिडेंट है कि 70s में जब किशोर कुमार अपने करियर की पीक पर थे तब बाबू रंगरेज खंडवा से बॉम्बे उन्हें मिलने आए। किशोर कुमार को उनको देखकर लगा कि उनकी फाइनेंशियल हालत शायद थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से किशोर कुमार ने उन्हें कुछ पैसे ऑफर किए अपनी तरफ से, जिन्हें देखकर बाबू रंगरेज ने कहा कि मैं यहाँ इन पैसों से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। और ये सुनकर किशोर दा एकदम भाव विभोर हो गए। ये कहने लगे कि जितना प्यार मुझे खंडवा में मिला है उतना बॉम्बे में नहीं मिला। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहे।

So the other day I was watching this film Asha, 1957 की जो फिल्म है आशा. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. वही फिल्म जिसमें इना मीना डी का गाना है, जिसमें लीड्स में किशोर कुमार वैजयंती माला है. उस फिल्म में मैंने ना छोटी सी प्यारी सी आशा पारेख जी को नोटिस किया. जी उनकी डेब्यू फिल्म तो 1959 में आई थी दिल देके देखो, ये उससे पहले का उनका एक छोटा सा काम था, दो तीन सीन का काम है इस फिल्म में उनका. खैर अभी हम उस फिल्म का गाना सुनेंगे जिसमें पहले नंदा जी को लिया जाने वाला था, लेकिन नंदा जी उस टाइम पे ग्लैमरस रोल्स देख रही थी और ये थोड़ा सिंपल सा रोल था, और समहाउ फिर आशा पारेख जी ने ये रोल किया. फिल्म बहारों के सपने का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: कभी कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कुछ अच्छी चीजें भी सीख लेनी चाहिए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और एवरी नाउ एंड देन हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? वो लाइफस्टाइल हो, फैशन हो, खाना पीना हो, या फॉर दैट मैटर एनीथिंग एल्स। लेकिन एक चीज जो आपको शायद ध्यान पे नहीं आ रही है इज समथिंग दैट दीज सेलिब्रिटीज दैट वी लुक अप टू आर इन्वेस्टिंग इन। सो अगर अपनी पर्सनल जिंदगी की बात करूं तो मैंने अपने आसपास देखा है अपने ही घर में रिलेटिव्स के साथ कि भाई वो अपने गांव देहात की जो जमीन है उसको बेच बेच के शहर मूव करना चाहते हैं और वहां पे ना अपार्टमेंट कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं छोटे छोटे फ्लैट्स खरीद के, एंड दैट हर्ट्स मी लाइक एनीथिंग। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो लैंड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं यार। सो रणबीर कपूर ने रिसेंटली 25 एकड़ लैंड लिया है विच हैज कॉस्टेड हिम अराउंड 16.42 करोड़, और उनके अलावा बिग बी हो, कार्तिक आर्यन, कृति सैनन, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, इन सब ने भी सिग्निफिकेंट लैंड इन्वेस्टमेंट्स किए हैं हाल में ही इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप करोड़ों के ही जमीन खरीदो, बट आपकी जो छोटी सी ही सही है वो सौगात, वो लैंड, उसको अपनी जिंदगी में अपने सीने से चिपका के रखो यार, क्योंकि दैट माय डियर फ्रेंड इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vida para la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Could I speak to Komal, please?
2: Speaking.
3: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने actually eve teasing को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक initiative शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: 10:30 बजे.
3: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
3: नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
2: ये खुद गुस्से में हो.
3: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
2: आप हद से ज्यादा
3: हद से क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की सुरक्षा की बात की
3: किस तरह की. नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागे
2: फोन
3: रखिए आप, बेकार की बात. हेलो
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर.
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओके
3: मेरी बात सुनिए. कोमल कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं नहीं 10:30 बजे?
2: मिस्टर, ये आप हैं
3: जी.
2: मैंने आपको गुस्सा दिलाया, किसी दिन आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा.
3: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके कुकड़ू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। The Odyssey frenzy is on, my friend. मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म द ओडिसी के बारे में, जिसके मुंबई प्रेस मीट के लिए खुद डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के साथ साथ मैट डेमन एंड टॉम हॉलैंड भी आए थे, एंड दे विजिटेड मुंबई के कोलाबा में सिचुएटेड 108 साल पुराने कॉफी हाउस में। नाम है इसका द ओलंपिया। And ever since this visit, उस कैफे में इतनी भीड़ होने लगी है कि क्या ही बताओ। इनफैक्ट लोग आ रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि भाई नोलन वाले टेबल पे बैठना है हमें। बाकी ये फिल्म 17th ऑफ जुलाई को रिलीज हो रही है, और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ओलंपिया में ही क्यों बैठे ये टीम मेंबर्स ऑफ द मूवी, तो देखो द ओडिसी रिवॉल्व्स अराउंड ग्रीक किंग, और ओलंपिया जो है उसका भी स्ट्रॉन्ग ग्रीक कनेक्शन है, एज इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर इन एशियंट ग्रीस, जिसे हमारे ओलंपिक गेम्स भी निकले हैं यार। तो मूवी के पहले इतना क्रेज है, तो सोचिए मूवी आने के बाद क्या हाल होगा। इट हैज बीन ऑफिशियली कंफर्म्ड दैट तुम्बाड 2 का हिस्सा डेफिनेटली बन रही हैं आलिया भट्ट, एंड इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स वगैरह भी पोस्ट कर दिए गए हैं, जहां आलिया हैज मेट द प्रोड्यूसर एक्टर सोहम शाह। बाकी फिल्म के रिलीज का प्लान ऑलरेडी सेट है, विच इज फॉर द 3rd of December नेक्स्ट ईयर। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। बहुत जल्द शूटिंग शुरू करने वाले हैं अपने पेटर्निटी लीव पे जाने के पहले रणवीर सिंह, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर दिस अपकमिंग जॉम्बी थ्रिलर जिसका नाम है प्रलय। बाकी फिल्म के मेकर्स आर इन डिस्कशन विद मेंबर्स ऑफ प्रोस्थेटिक्स टीम, जिन्होंने डैनी बॉयल की कल्ट हॉरर फिल्म 28 डेज लेटर पे काम किया था। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी, एंड दिस इज हैपनिंग टू क्रिएट द क्रिएचर इफेक्ट्स फॉर द फिल्म। बाकी द काइंड ऑफ एक्टर रणवीर सिंह इज, उनको एक जॉम्बी थ्रिलर मूवी में देखना काफी मजेदार होगा। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। Stay tuned, it's hot.

0: गले हे कभी आना तुम मेरे गले,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय, मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही थी। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, चलिए उनको लगाम लगाइए, वापस आइए। सो बेसिकली द ड्रिल इज कि इस गेम की शुरुआत होती है आपके डीएम्स के जरिए। तो आपको मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ और इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं आशीष फ्रॉम गाजियाबाद। तो सर, क्या तैयार हैं आप मेरे सवालों का सिलसिला झेलने के लिए?
3: अरे बिल्कुल तैयार है।
0: ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो रोड कॉन्ट्रैक्टर बने हैं,
3: खट्टा मीठा,
0: खट्टा मीठा में अवार्ड अंशुमन कौन है?
3: अवार्ड जॉनी लिवर।
0: यस, जॉनी लिवर किस फिल्म में भूला है?
3: गोलमाल।
0: कौन सा पार्ट?
3: गोलमाल 3।
0: यस, गोलमाल 3 में उंगली तोड़ने का चस्का किसको होता है?
3: अजय देवगन
0: की फिल्म जिसमें बंदर गाड़ी चलाता है,
3: इश्क।
0: यस इट इज इश्क में नकली चाकू से चे चू कौन करता है?
3: आमिर खान
0: किस फिल्म में पूरे इंडिया में रन करते हैं?
3: आमिर खान, ओ लाल सिंह चड्ढा।
0: यस इट इज लाल सिंह चड्ढा में उनको किससे प्यार होता है?
3: करीना कपूर
0: दो अलग अलग स्टाइल के फुटवेयर किस फिल्म में पहनती है?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: कुछ ज्यादा ही जोर से फिल्मची अंदर से जाग रहा है आपका। कभी खुशी कभी गम में धरती पे पैर रखते ही अपने बेटे के बारे में किसको पता चल जाता है?
3: वो जया बच्चन।
0: हाँ, जया बच्चन रणवीर सिंह की सड़ू दादी किस फिल्म में बनी है?
3: सड़ू दादी रॉकी रानी।
0: यस इट इज रॉकी रानी की प्रेम कहानी में टीवी एंकर कौन है?
3: अपनी आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट किस फिल्म में थेरेपी लेती है?
3: डियर जिंदगी
0: में डॉक्टर जग कौन है?
3: शाहरुख खान
0: किस फिल्म में किरण बोलते हैं?
3: ये नहीं पता मुझे।
0: ये कैसे नहीं पता भाई किसी इंसान को?
3: किरण मैं ये नहीं पता मुझे।
0: मतलब मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये मूवी किसी को नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, दैट वाज वंडरफुल। तो चलिए, इतना अच्छा जो यहाँ तक गेम आपने पहुँचाया उसके लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी यार।
1: मिर्ची फिल्मची,
0: तो देखते हैं कि ये आगे का गेम कौन कंटिन्यू करने वाला है। यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजना है, बाकी आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: और आप तो सिर्फ प्यार नहीं, फुल ऑन एंथुसियाज्म के साथ ये गेम खेलते हो यार। अरे मैं तो मिर्ची फिल्मची की बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो। सो बेसिकली आज इस गेम की शुरुआत हुई थी आशीष से, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट एंड उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है सुश्रुत। हाय सुश्रुत, कैसे हो आप?
3: एकदम बढ़िया, हो श्रुति?
0: आई एम ग्रेट। मुझे आपका नंबर मेरे डीएम से मिला, मैंने सोचा आपको कॉल करके पूछ ही लेती हूँ क्या गेम खेलोगे, कंटिन्यू करोगे।
3: ब्रिंग इट ऑन।
0: ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ कहाँ से बात कर रहे हो?
3: मैं तो नोएडा से बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो चलिए फिर। शाहरुख खान किस फिल्म में किरण करते हैं?
3: डर।
0: डर में जूही चावला की एंगेजमेंट किससे होती है?
3: सनी देओल।
0: सनी देओल हैंड पंप किस फिल्म में उखाड़ते हैं?
3: गदर।
0: गदर में उनको किससे प्यार होता है?
3: अमीषा पटेल।
0: अमीषा पटेल की डेब्यू फिल्म कौन सी है?
3: कहुना प्यार।
0: कहुना प्यार है में सितारों की महफिल में कौन परफॉर्म करता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन किस फिल्म में विजुअली इम्पेयर्ड वॉइस आर्टिस्ट है?
3: काबिल।
0: सब पता है ना तुझे यार। काबिल में उनकी वाइफ कौन है?
3: यामी गौतम।
0: यामी गौतम की किस फिल्म में स्पर्म डोनेशन की बात है?
3: विकी डोनर।
0: विकी डोनर में स्पर्म कौन डोनेट करता है?
3: आयुष्मान खुराना।
0: आयुष्मान खुराना लड़की बनके फोन पे किस फिल्म में बात करते हैं?
3: ड्रीम गर्ल।
0: तो इसी बात पे आपने जो इतना अच्छा गेम खेला है उसके लिए मैं आपको टैग दूंगी, बट पहले मुझे लड़की के स्टाइल में बोल के दिखाओ ना यार।
4: हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ।
0: पूजा, मैं तो सुश्रुत से बात कर रही थी।
4: वो मेरा दोनों चलता है।
0: हाउ स्वीट यार, सच अ स्पोर्ट यू आर। थैंक यू सो मच सुश्रुत।
3: थैंक यू श्रुति।
0: तो ये है हमारे आज के दूसरे
1: मिर्ची फिल्मची।
0: बाकी अगर आपके अंदर के फिल्मची को फोमो हो रहा है, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, ये सिलसिला हर दिन जारी रहता है। तो कल के गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी ही मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेज डालो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello. Hello.
3: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
4: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे। यार आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन, यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने ड्रिल मशीन के, सारे जाग जाएंगे यार।
3: चोरी करने के लिए
4: तुमने पहले क्यों नहीं
3: बताया? चोरी कर
4: रहा हूँ,
3: मुझे फंसवाएगा। मुझे फोन कर दिया
4: बहन।
3: हेलो
4: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: आप ठीक है?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट पटा।
6: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
7: हिट गाना।

0: कॉन्टेंट इज ग्रेटर देन मसाला।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब देखो यार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जब बात होती है तो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ही आता है हमारे दिमाग में। इनफैक्ट हम अगर फिल्मों को सोचते हैं तो उसमें बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा एक्शन, इंटेंस इमोशंस, ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं। इनफैक्ट हमें दिखता भी है। बट इन द रीसेंट टाइम्स बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठाया है अपने फिल्मों के थ्रू दैट हैव नॉट ओनली क्रिएटेड अवेयरनेस बट हैव ऑल्सो एंडेड अप इन्फ्लुएंसिंग पीपल। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट शुभ मंगल ज्यादा सावधान, डायरेक्टेड बाय हितेश केवलिया, स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड जितेंद्र कुमार इन लीड रोल्स। वेल, द मूवी रिवॉल्व्ड अराउंड टू मेन इन लव, डेल्ट विद होमोफोबिया बेसिकली। एंड इस फिल्म में इक्वल अमाउंट ऑफ ह्यूमर भी था, ड्रामा भी था, बट इट गेव अ बिग नज टू आवर सोसाइटी कि हम एज ह्यूमंस हर इंसान को वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें रादर दैन categorizing them into a particular section. An intriguing movie to watch for sure. Moving on in the list, number 3 pe let's talk about Lamhe. Ye film aayi thi in the year 1991 starring Shridevi and Anil Kapoor in the lead roles. Kahani ek choti umr ki ladki ke ek apne baap ki umr ke bande ke sath pyar mein pad jane ki hai. हाँ सोचो, 1991 में इस कॉन्सेप्ट के साथ आए थे यश चोपड़ा साहब। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है देन इट इज अ डेफिनेट वॉच फॉर यू। फिलहाल मेरी इस लिस्ट में और भी दो फिल्मों की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मसाला इज नॉट ऑलवेज आवर क्रेविंग.
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: बाबू मशाल, मैं फिल्मों की बात कर रही हूँ यार. आप कहाँ खाने पीने के ख्यालों में खो गए. सो बेसिकली अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा एक्शन, इंटेंस ड्रामा और इमोशन भरा हुआ होता है. इन शॉर्ट, सब कुछ मसालेदार. बट हाँ, लीक से हटके बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और आज पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों की बात कर रही हूँ. वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बधाई हो भाई साहब. 2018 में आई थी ये फिल्म. अब सोचो आज की डेट में अगर आपको भी पता चलता है कि आपकी माँ प्रेग्नेंट हो गई है, ऐसी सी फीलिंग आपको अगर ना भी आए, आपके आसपास बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे. एंड दिस इज व्हाट द मूवी डेल्ट अबाउट. बेसिकली इस फिल्म ने हमें बहुत सारे वैल्यूबल लेसन्स दिए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सिखाया है कि हमें इलॉजिकली अपने पेरेंट्स को कभी भी जज नहीं करना चाहिए. बेसिकली इस कहानी में जिस तरीके से पेरेंट्स के बीच के प्यार और अफेक्शन को दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि भाई वो भी ह्यूमंस हैं, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं और भावनाओं में वो भी बह जाते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली ओके. सो प्लीज डोंट मेक अ फस अबाउट इट. अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है देन यू should definitely watch it. Yeah, moving on, number 5 pe let's talk about the film Kya Kehna. 90s kid hone ke nate mujhe ye film kafi zyada pasand hai, main bata sakti hu. And let's be honest, aaj bhi premarital sex aur pregnancy टैबू माना जाता है यार. इस कहानी में एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट किस तरीके से शादी के पहले प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो क्या डिसीजंस लेती है अपनी लाइफ के लिए इज व्हाट द मूवी टॉक्स अबाउट. एंड प्रीति जिंटा वाज जस्ट सो फ्लॉलेस इन इट. वेल, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई फिल्म ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट. MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी. इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी. इट्स हॉट.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। The Odyssey frenzy is on, my friend. मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म द ओडिसी के बारे में, जिसके मुंबई प्रेस मीट के लिए खुद डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के साथ साथ मैट डेमन एंड टॉम हॉलैंड भी आए थे, एंड दे विजिटेड मुंबई के कोलाबा में सिचुएटेड 108 साल पुराने कॉफी हाउस में। नाम है इसका द ओलंपिया। एंड एवर सिंस दिस विजिट, उस कैफे में इतनी भीड़ होने लगी है कि क्या ही बताओ। इनफैक्ट लोग आ रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि भाई नोलन वाले टेबल पे बैठना है हमें। बाकी ये फिल्म 17th ऑफ जुलाई को रिलीज हो रही है, और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ओलंपिया में ही क्यों बैठे ये टीम मेंबर्स ऑफ द मूवी, तो देखो द ओडिसी रिवॉल्व्स अराउंड ग्रीक किंग, और ओलंपिया जो है उसका भी स्ट्रॉन्ग ग्रीक कनेक्शन है, एज इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर इन एशियंट ग्रीस, जिसे हमारे ओलंपिक गेम्स भी निकले हैं यार। तो मूवी के पहले इतना क्रेज है, तो सोचिए मूवी आने के बाद क्या हाल होगा। इट हैज बीन ऑफिशियली कंफर्म दैट तुम्बाड 2 का हिस्सा डेफिनेटली बन रही हैं आलिया भट्ट, एंड इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स वगैरह भी पोस्ट कर दिए गए हैं, जहां आलिया हैज मेट द प्रोड्यूसर एक्टर सोहम शाह। बाकी फिल्म के रिलीज का प्लान ऑलरेडी सेट है, विच इज फॉर द 3rd of December नेक्स्ट ईयर। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। बहुत जल्द शूटिंग शुरू करने वाले हैं अपने पेटर्निटी लीव पे जाने के पहले रणवीर सिंह, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर दिस अपकमिंग जॉम्बी थ्रिलर जिसका नाम है प्रलय। बाकी फिल्म के मेकर्स आर इन डिस्कशन विद मेंबर्स ऑफ प्रोस्थेटिक्स टीम, जिन्होंने डैनी बॉयल की कल्ट हॉरर फिल्म 28 डेज लेटर पे काम किया था। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी, एंड दिस इज हैपनिंग टू क्रिएट द क्रिएचर इफेक्ट्स फॉर द फिल्म। बाकी द काइंड ऑफ एक्टर रणवीर सिंह इज, उनको एक जॉम्बी थ्रिलर मूवी में देखना काफी मजेदार होगा। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। Stay tuned, it's hot.

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज़्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठ कर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़ी कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na virtuala burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: Thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: मतलब गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो.
1: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए, ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट,
1: पूरी कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट.
2: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह. आओ मिलो,
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े.
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू.
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कुछ नहीं,
2: सर ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? ये हमें हर इमोशन के लिए गाना दे ही देता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और बारिश हो तो अलग प्लेलिस्ट, लॉन्ग ड्राइव हो तो अलग, हार्ट ब्रेक के लिए अलग और सेलिब्रेशन के लिए अलग। और मज़े की बात तो ये है कि कभी कभी हम फीलिंग्स बाद में समझते हैं और बॉलीवुड पहले ही उसके लिए गाना बना चुका होता है। और इसीलिए कुछ सॉन्ग्स ना सिर्फ हिट नहीं होते, वो हमारी लाइफ के माइलस्टोन्स बन जाते हैं। चाहे फिर स्कूल फेयरवेल हो, पहली सैलरी हो, पहला प्यार हो या फिर फैमिली रोड ट्रिप, हर मेमोरी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड सॉन्ग जरूर बज रहा होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल ट्रैक कौन सा बॉलीवुड गाना होगा? DM ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं कि आज का अगला गाना किसकी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक बनने वाला है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

अगर फलों में किसी को अवार्ड देना हो ना तो इस एक फ्रूट को जरूर मिलना चाहिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए ना, जहाँ इतने सारे फल है, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, वह हर इंसान का दोस्त अगर कोई एक फ्रूट है तो वो है बनाना। अब जाहिर सी बात है, बनाना हर स्टोर में ईजिली अवेलेबल होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, कुछ नखरे नहीं, जैसे कि ना काटना पड़ता है ऑरेंज की तरह, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अनार की तरह, बस उठा लो, पील करो और खा लो। और अगर ऐसे सीधा साधा नहीं पसंद तो स्मूदी बना लो, डेजर्ट बना लो, या मेरे फेवरेट डीप लॉन्ग बनाना चिप्स फॉर्म में खा लो। और एक नहीं, उसमें भी तीन तीन वैरायटी, प्लेन चिप्स, ब्लैक पेपर चिप्स एंड रेड चिली चिप्स। तो हर फॉर्म में आपको मिलेगा 100% नेचुरल क्रिस्पी बनाना चिप। और अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो अपने नज़दीकी इंडियन स्टोर से ले आइए हेल्दी एंड क्रिस्पी डीप बनाना चिप्स, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको बनाना का ये अंदाज पसंद आया या नहीं। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Radio Mirchi New York. It's hot.
1: Mirchi. Fresh Maal.
2: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी.

इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

दोस्तों, कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुमसे ही बच जाए, या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल रहा ही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार, बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, आपके दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो थोड़ा सा फिल्मी था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल मेरे दिल के फिल्मी मोमेंट के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

तो बॉलीवुड का लैंडस्केप ना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना एक फॉर्मूला होता था, बिग स्टार, बिग सॉन्ग्स, बिग रिलीज। आज ना इंडस्ट्री थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो चुकी है, क्योंकि एक्टर्स भी डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई कर रहे हैं और डायरेक्टर्स भी यूनिक स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है, तो सिर्फ ग्लैमर नहीं, कॉन्टेंट भी डिमांड करती है। और शायद इसी वजह से कुछ फिल्म थिएटर में धमाका करती है और कुछ OTT पे कल्ट फॉलोइंग बना लेती है। यार ये इंटरेस्टिंग फेज है जहां बॉलीवुड एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मल्टीपल लेन्स में ग्रो हो रहा है। और सच कहूं तो जब इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट करती है ना, तभी आइकॉनिक सिनेमा पैदा होता है। तो आप भी बताना, आप कौन सी टाइप की फिल्म ज्यादा पसंद करते हो? टेल मी ऑन Insta@RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virpa, la burka.
1: Mirchi, burka. Hello.
2: Hello. Hello.
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार, आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
2: तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने ले गया,
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
2: मेरी बात सुन,
1: माँ का तू मुझे मरवाएगा। कल तुझे मुझे फोन कर दिया,
2: मेरी बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पजल।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसे चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहां इतने सारे गाने बनते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और 2008 की रिलीज दोस्ताना का एल्बम, ओ हो हो, इट वॉज वन दैट एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। विशाल शेखर कंपोज, जिसके सारे गाने इतने अमेजिंग थे, लेकिन जब दोस्ताना रिलीज हुई थी और टीवी पे ये गाना रिलीज हुआ था तो माय गॉड, माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी पे नॉर्मल कलर्स दिखते हैं, लेकिन सडनली एक दिन ब्लू पानी दिखने लगा। उसमें जॉन अब्राहम अपनी अमेजिंग सी स्माइल लेकर मायामी बीच पे दिखाई दिए विद शिल्पा शेट्टी डूइंग शट अप एंड बाउंस। माय गॉड, दैट सॉन्ग नॉट जस्ट ब्लू माय माइंड विजुअली बट ऑल्सो ब्लू माई माइंड म्यूजिकली, क्योंकि सुनिधि चौहान की आवाज़ और अमेजिंग सा ये गाना मायामी बीच पर शॉट, कि जब मायामी जाओ तो ये गाना दिमाग में प्ले ना हो, बैकग्राउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बातें करते हैं दोस्ताना के एल्बम के बारे में, एंड स्टार्टिंग विद दिस वन सॉन्ग शट अप एंड बाउंस राइट हियर ऑन मिर्ची। तो आपके लिए मैं बजाने वाली हूँ शट अप एंड बाउंस, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी शट अप एंड बाउंस बाय सुनिधि राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बना था और बिल्कुल बना था। 2008 में एक ऐसा एल्बम बना था दोस्ताना, जिसका यार हर एक गाना दिल को छू गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टी सॉन्ग्स जो इसी मूवी से, इसी म्यूजिक एल्बम से निकला है, दैट इज देसी गर्ल, संग बाय शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान एंड विशाल ददलानी। ये पूरा का पूरा एल्बम ही वैसे तो यार विशाल शेखर ने बनाया है, लेकिन ये जो गाना है वो काफ़ी खास है, क्योंकि इस गाने ने ना प्रियंका चोपड़ा को एक आइडेंटिटी दी। जी हाँ, मतलब प्रियंका चोपड़ा वैसे तो इस मूवी में लहरों में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस गाने के बाद देसी गर्ल हर शादी का एक एंथम ही बन गया। और हमें भी कहाँ पता था कि प्रियंका भी इंटरनेशनल हो जाएगी और उनकी एक आइडेंटिटी ही बन जाएगी, देसी गर्ल। तो जी हाँ, देसी गर्ल वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम। वैसे तो हम शट अप एंड बाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप माता लाला तो सुन ही चुके हो, तो चलिए आपके लिए बजाते हैं देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskra bana, puska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. La virba la burka. Milci, burka. Burka.
2: Hello.
3: Could I speak to Komal, please?
2: Speaking.
3: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: साढ़े दस बजे.
3: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो रहे
3: हैं. गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
2: एडवाइस.
3: खुद गुस्से में आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
2: आप हद से ज्यादा
3: हाँ क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की बात
3: की. किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो.
2: हेलो.
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ई टीजिंग को लेकर. कोमल कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं नहीं साढ़े दस बजे?
2: मिस्टर, ये आप हैं जी. मैं गुस्सा दिलाया, किसी दिन आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा.
3: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके कुकड़ू को.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका इस गोल्डन आवर में। दोस्तों देखिए, समर तो शुरू हो चुका है और समर जब भी शुरू होता है ऐसे एक मतलब एक ऐसी एक सेगमेंट होती है लोगों की जिनको मन करता है कि बस अभी तो टाइम है कि शॉपिंग करनी है, क्योंकि यार समर वो एक ऐसा मौका होता है जब लोग बाहर निकलते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, शादियों का सीजन होता है और ऐसे में नई नई चीजें मार्केट में क्या आई है ये बताने के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आते हैं बॉबी जी, उनसे बेहतर और कौन हो सकता है। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि समर ट्रेंड्स क्या है फिलहाल गोल्ड मार्केट में। तो नमस्ते बॉबी जी, स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में।
1: नमस्कार नमस्कार सिद्धि जी, हैप्पी इवनिंग टू यू। और बता दूं आपको सिद्धि जी, गोल्ड के प्राइस 4060 $4,060 पर ड्राई ऑन ट्रेड कर रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: गोल्ड पिछले हफ्ते से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड पर है। सर्कल जो है ना पूरा गोल गोल गोल गोल घूम रहा है। आप हिंट समझ रहे हैं मेरा?
0: बिल्कुल
1: गोल गोल गोल सर्कल में,
0: बिल्कुल जलेबी की तरह
1: जैसा, बिल्कुल जलेबी की तरह। और देखिए, दुनिया बड़ी त्राही त्राही से, कोई इस चीज से खुश नहीं है, कोई इस जंग से परेशान है, कोई गोल्ड के प्राइस से परेशान है। इन सब चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आइए अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। वी एवरी डे दैट वी वेक अप, वी थैंक गॉड फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल लाइफ एंड हैप्पी लाइफ हैप्पी वाइफ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। सिद्धि जी ये भी आपने सुना होगा। तो मुझे लगता है कि आप अपनी बीवी के लिए खूबसूरत डिजाइनर जलेबी नेकलेसेस विद कुंदन एंड विद कलर स्टोन्स राज ज्वेल्स की डिजाइनर कलेक्शन में रेडी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ठीक है, दुनिया में हर जगह पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन हमारे घर की जो सेलिब्रेशन है वो भी रुक नहीं रही। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए $4,060 पर ट्राई ऑन्स में राज ज्वेल्स के साथ जलेबी कलेक्शन देखने के लिए कि किस तरह से आप जलेबी का वो खूबसूरत नेकलेस और जलेबी की बैंगल्स घर ले जा सकते हैं 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 9 इंस्टॉलमेंट में। आइए सिद्धि जी, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। देखिए बहुत सारे दोस्त फाफड़ा जलेबी भी खाते हैं, लेकिन जलेबी के नेकलेसेस आपने भी नहीं देखे होंगे। तो आज राजोस के साथ जलेबी के नेकलेसेस देखने के लिए और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए राजोस की टीम के साथ। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि बॉबी जी ने कहा कि जलेबी सिर्फ खुशी नहीं लाता है, मतलब एक सिर्फ मिठाई ही नहीं है, एक नया ट्रेंड भी शुरू हो चुका है इन गोल्ड ज्वेलरी। तो अगर आपको चेकआउट करने हैं जलेबी सेट्स, आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com। और तब तक के लिए ये मीठा सा गाना आपके लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

शमशादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में, जहां हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे खास एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। जी हां, बात हो रही है 2008 में रिलीज दोस्ताना मूवी की, जिसके जो गाने हैं वो कंपोज किए हैं विशाल शेखर ने। और क्या कंपोज किए, मतलब एक से बढ़कर एक गाना है इस एल्बम में। और वैसे तो हम इतने सारे गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है रौनक पटेल से, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे। उन्होंने कहा है कि यार जब भी कोई ट्रिप जाती है और दोस्त साथ में होते हैं तो ये गाना तो हमेशा बजता ही है उस ट्रिप में फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि ये गाने का एक टैगलाइन है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट। और हर बार दोस्तों के साथ यही फील होता है कि भाई तू है ना तो आई विल बी ऑल राइट। तो जी यार, चलिए इसी फीलिंग के साथ रौनक पटेल की रिक्वेस्ट पर ये गाना बजाते हैं फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते हैं ना उसके सारे गाने यहाँ पर और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गाना बजा दूं
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
2: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Let's do not donkey, have a funky time.
1: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में यार जिसका हर एक गाना धमाकेदार है, दिल को छू जाने वाला है। जी हां, 2008 की रिलीज दोस्ताना मूवी जिसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने और जिसका म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर ने, यार क्या एल्बम बनाया, हर एक गाना दिल को छू जाने वाला था। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आपसे आई है, दैट रिक्वेस्ट इज फ्रॉम प्रियंका। और प्रियंका कहती है, वैसे प्रियंका रहती है जर्सी सिटी में लेकिन वो फिलहाल विजिट कर रही है एडिसन, अपने यू नो पार्टनर से मिलने आई है। और जब भी वो लोग डेट नाइट्स पर जाते हैं तब ये गाना बहुत बार वो अपने प्लेलिस्ट में बजाते हैं, एंड दैट इज़ खबर नहीं इट्स एन आयरनी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेट पे कहाँ जाना है यही हमको खबर नहीं होती। लेकिन ये जो गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, तो श्रेया घोषाल एंड शान की आवाज़ में। तो चलिए आज प्रियंका के लिए ये गाना प्ले करते हैं, आयरॉनिकली उनका नाम भी प्रियंका है एंड शी इज़ गोना लव दिस सॉन्ग। तो चलिए आज प्रियंका के लिए खबर नहीं प्ले करते हैं, लेकिन आप भी दोस्तों मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन एल्बम जिसका हर एक गाना बहुत अमेजिंग है और आप कभी स्किप नहीं कर पाते हो। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि मेरा तो काम ही है आपके लिए वो गाने प्ले करना, राइट हियर ऑन मिर्ची। और कहाँ, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओह गॉड, वन मोर।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। श्याम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया। यार ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La vie est pas la burga. Mirchi, burga.
1: Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने के लिए
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
2: मेरी बात सुन,
1: मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: मेरी बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पहले बॉलीवुड में सिर्फ फ्राइडे का वेट होता था, लेकिन अब तो ट्रेलर रिलीज भी एक मिनी इवेंट बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल किसी फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया ना दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक टीम कहती है कि मुझे तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, और दूसरी टीम कहती है कि नहीं नहीं पहले रिव्यूज आने दो। और मुझे ना इस जनरेशन की एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले हम सिर्फ फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम ट्रेलर ब्रेकडाउन देखते हैं, फैन थियोरीज पढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करते हैं, और टीजर के एक फ्रेम पर भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं कॉन्वर्जेशन भी क्रिएट करता है। वैसे आप ही बताइए दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ट्रेलर देखते ही टिकट बुक करने वाले या पहले आप रिव्यू सुनते हो? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और चलिए अब ट्रेलर से सीधा पिक्चर की दुनिया में चलते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड के गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक बात तो माननी पड़ेगी कि न्यू जर्सी की समर ना घर में बैठने के लिए बनी ही नहीं है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, फिर चाहे फार्मर्स मार्केट हो, फूड फेस्टिवल्स हो, बीच ट्रिप्स, इवनिंग वॉक्स, कॉन्सर्ट्स, काउंटी फेयर्स, या बस मौसम को देखते रहना। वैसे यार आजकल ना मन करता है कि घर थोड़ा लेट ही चलता है, क्योंकि समर की सबसे प्यारी बात ही ये होती है कि प्लान्स ना बहुत बड़े होने की ज़रूरत नहीं। कभी एक आइसक्रीम, कभी एक पार्क की वॉक, कभी बस कार की विंडोज डाउन करके बॉलीवुड सुनते हुए ड्राइव, और शाम यादगार बन ही जाती है। तो इस हफ्ते न्यू जर्सी चैलेंज ये है कि एक नई जगह ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपके पास कोई हिडन जेम हो, फिर चाहे वो कॉफ़ी शॉप, पार्क या सनसेट स्पॉट हो, तो मुझे ज़रूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHR। और चलिए न्यू जर्सी की इस खूबसूरत समर इवनिंग को बॉलीवुड के सुरों से और भी रंगीन बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iscaba la puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vizba la murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: I'm very fine, thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ,
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे.
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: मतलब ये गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो.
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह.
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो. कच्चा धागा. रेस लगा लो. दस पत्ते तोड़े.
2: एक पत्ता कच्चा.
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े. या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े.
1: दस पत्ते तोड़े.
2: हिरण का बच्चा. हिरण का बच्चा. सब हिरण का बच्चा.
1: ओके सॉरी. हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू.
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू.
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को.
1: मिस्टर
2: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप को ही बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कोई सुनेगा
2: सर ये.